कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्म योग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज ये साल 2026 जुलाई महीने का गुरुवार दिन और तारीख है 9। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारे पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले कार्यक्रम पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए गालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप अतानी दैनिक न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दैनिक न्यूज़।

7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर के खास खबरों के साथ। 8:40 आप सुनेंगे हेलो इटानागा इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है, 6 बजने वाले हैं, अब सुनेंगे
1: बड़ी
0: समाचार।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में

0: श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi is also scheduled to participate in the India-Australia CEOs Forum and address business leaders from both the countries. He will also interact with the Indian diaspora at a community event in Melbourne. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a 3-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The two-day 23rd national-level meeting between India and Myanmar concluded in New Delhi yesterday. Ministry of Home Affairs said that the two sides discussed cooperation in combating transnational crimes, including terrorism, insurgency, narcotics trafficking, arms smuggling, human trafficking, wildlife trafficking, cybercrime, and other forms of organized crime. They also agreed to enhance intelligence sharing and operational coordination and undertake capacity building initiatives to address shared

तो दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत अनुराधा पौडवाल जी की आवाजों में।

0: दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, सुबह के सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अब वक्त हो गया है अपने आसपास की खबरों से जुड़ने का। सुनिए गालो दालिक न्यूज, जहां आप तक पहुंचती है आपके क्षेत्र की हर जरूरी और खास जानकारी आपकी अपनी भाषा में।
1: आकाशवाणी ईटानगर तनगदम रोकम जाब तेल पोल अलोकिंगन अरसोगो नुक्तलिरु नम गलो मिंकिनांग मेंजिदु मिंकिन मेंजिना से कोई जर्दो मरो के फायर डिस्ट्रिक्ट लोक दुना दिदर रचग मोतु मोरे को एमने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम एम जॉइंट सेक्रेटरी निस्ता तिवारी बु इंगे सिदु ला डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी दानी सालू ओक लाइसेंस ऑफिसर एम इंगे दुला मोको मोतु मोरे नम गदम कागो तागो मृदु कुला सोक दिदिर रचग इंगे कुनम नम रुम तुम एंदेरेन सला रन गदम चिंबुन कारक तरकम कारक तरक सिदु कुला बुन अरुणाचल प्रदेश सोक योलो योलो मोकलो संबदा मोतु मोरे नम कादु दे अगम यो ब्रिला चिन तीम कागुर तागुर मृगर हमला तोगसिका मरो डिप्टी चीफ मिनिस्टर छोना मेन बु कबाबो ब दुग दुला अनसंग हीरो अरुणाचल प्रदेश लोक कमिटी एम दुग दुला गय ग अरुणाचल प्रदेश सोग चतर मेंटर ला सिलक ने लकुना ओक अरुणाचल प्रदेश सिगिम ने न्यूमो कापा मकुना न अनसंग हीरो गदम ने कमिटी गदम नो यो रिलाचिन इजालो ब मालेन मानाम गो कारम मालेन कालेन मृदु कुला अलब रिकॉर्ड ओके हिस्ट्री एम अतलका आलो रतने गोयक आला देन अदुआ गदिक लगा बस ग दिंची जारु नगबर र अमला कबालो दिंची जाब चपका मरो एजुकेशन मिनिस्टर फिडी सोना ब कबाबो ब दुग दुला आर डब्ल्यू डी लोक अकिन अकिन परफॉर्मेंस रिव्यू अबा सोक लगा ब कबाम बादुम तु कबासो को स्टेट सोक पीएमजीएसवाई ओक वाइब्रेंट ब्लेस प्रोग्राम प्रोजेक्ट लोक अगर गर नाम एम कानाम तनाम लगाव ओक इजालो व योम्ब अगर अंगर पु मादु ना दे सिगम योम्ब छे अगर अंगर पु केंदो कुन्ना दे ओक लगाव कबाम दिंची जाव जब तुमका बे सोशल मीडिया लो पोस्ट तुला मेला अगर गर नाम एम अकाउंटेबिलिटी एम दिंची तोका ओक प्रोजेक्ट अगर जिनम सिगिम यदलो रंगम दोब नम जितु दे अगम ओक समय लो योम रिलाचिन अगेरा नाम गल्लेंग गल्ला नुनु नरु नी गद क लगाब मदुला अगेरम दिंची दोब अद्दु दोब काकिन दोब योम रिलाचिन रुतलका इला मेंगेबा तेजु एमएलए मोहेस्टाइब मियो लोक लोदुम लोब दुल दुला मियो कागम ब्लॉक हमने केट्रिक ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री फ्लॉग ब पर्व डिक्लेयर का बे सिगम न्यूज सिगम सोशल मीडिया लो फोर्स तुला मेला मियो कागम ब्लॉक सिग काउंटी सोक अखेन न रुतयारु ब गवर्नमेंट लोक प्रोग्राम अरा लोक फ्री केट्रेक ब्लाइंडनेस बैकलॉग ब

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अपना पसंदीदा कार्यक्रम अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू, लेकर हाजिर हूं एक और नई सुबह नए जज्बे और ढेर सारे खुशियों के साथ। अभी अभी आपने सुना कालो श्रोताओं का कार्यक्रम और अब शुरुआत करते हैं एक नई सुबह की एक नई सोच के साथ। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सुबह के कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, सुबह का ये समय होता है नई ऊर्जा, नई सोच और एक फ्रेश शुरुआत का, और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए सेहत, योगा, एक्सरसाइज टिप्स और कुछ मधुर गीत संगीत। दोस्तों, सुबह का समय सिर्फ उठने का ही नहीं होता, यह होता है खुद से मिलने का, थोड़ा सा

सवेरे में आप हम बात करते हैं योगा की, एक्सरसाइज की, हेल्थ टिप्स की और कुछ गीत भी आपके लिए हम पेश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुबह की एक डीप ब्रीदिंग के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सांस की, क्योंकि सांस लेना ही सबसे बेसिक और पावरफुल एक्सरसाइज है। आप जहां भी हैं, चाहे कुर्सी पर या जमीन पर, सीधे बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। अब धीरे से 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए और अब धीरे से बाहर छोड़िए। इस सिंपल एक्सरसाइज को हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम। यह आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेस कम करता है और माइंड को काम करता है। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम की। इसमें आप एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं। ये बॉडी के एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करता है। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इसे 10 से 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार पर। यह एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर आप रोज 5 से 10 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आपको अलग से जिम की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, योगा कभी जल्द में नहीं करना चाहिए। हर मूवमेंट को आप जरूर फील कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और सुनते हैं एक फ्रेश और सूदिंग सुबह का गीत।

दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सुबह सवेरे में। दोस्तों योगा के साथ साथ मूवमेंट भी उतना ही जरूरी है। अगर आप जिम जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा पाते तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है वॉकिंग। रोज सुबह 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए और वेट कंट्रोल के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप थोड़ा और एक्टिव होना चाहते हैं तो घर पर ही कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे स्क्वाट्स जो आपके लेग स्ट्रांग बनाते हैं, पुशअप्स जो चेस्ट और आर्म्स के लिए बेस्ट है, और प्लैंक जो आपकी कोर को स्ट्रांग करता है। शुरू में 5 से 10 रिपीटेशन से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, वार्म अप। कभी भी डायरेक्टली हैवी एक्सरसाइज शुरू मत कीजिए। 5 मिनट का वार्म अप इंजरीज से बचाता है, और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए, ये मसल्स पेन को कम करता है। सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा करना, कभी कभी ज्यादा करने से बेहतर होता है। और दोस्तों आप जब आप अपनी बॉडी को इतना प्यार देंगे तो थोड़ा सा वक्त अपने मन के लिए भी निकालना जरूरी है। तो चलिए ऐसे पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखते हुए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी रहना मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना है, लेकिन असल में हेल्थ एक कॉम्बिनेशन है सही खाना, सही आदतें और सही सोच। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की रूटीन की।

आप सुबह उठते ही क्या करते हैं, ये आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। कोशिश कीजिए कि उठते ही तुरंत मोबाइल ना उठाए, 5 से 10 मिनट अपने लिए रखिए, हल्का सा स्ट्रेच कीजिए, ये बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं पानी की। रात भर की बात, बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेटेड होती है, इसीलिए सुबह उठकर एक ग्लास हल्का गर्म पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और फिर आता है ब्रेकफास्ट पर, जो दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील माना जाता है, लेकिन ब्रेकफास्ट हैवी नहीं, बैलेंस होना चाहिए। आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे फ्रूट्स, ओट्स, पोहा, उपमा, बॉयल एग्स या स्प्राउट्स, ये आपको एनर्जी देता है और बिना हैवी फील कराए। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, ओवर ईटिंग से जरूर बचिएगा। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में या टीवी देखते हुए ज्यादा खा लेते हैं। कोशिश कीजिए धीरे धीरे खाने की और अपने खाने को एंजॉय करने की। अब थोड़ी सी बात मेंटल हेल्थ की करते हैं। आज के बिजी लाइफ में स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन उसे मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। रोज की रूटीन में 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, हल्का म्यूजिक सुनना हो या बस नेचर को देखना हो। एक छोटी सी आदत जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है ग्रेटिट्यूड। सुबह उठकर 2 से 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, ये आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है। और हां, नींद, स्लीप को आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते तो बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं करती। लेट नाइट मोबाइल यूज कम कीजिए और सोने से पहले हल्का सा माइंड रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, मतलब होता है रोज थोड़ा बेहतर बनना। छोटी छोटी आदतें जैसे ज्यादा पानी पीना, थोड़ा चलना, फ्रेश खाना खाना और पॉजिटिव रहना, ये सब मिलकर आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाती है। तो आज से एक छोटी सी आदत जरूर शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ को हेल्दी और खुशनुमा बनाइए। चलिए दोस्तों, इसी हेल्दी और पॉजिटिव सोच के साथ अब वक्त हो गया है आज के तीसरे और आखिरी गीत का।

दोस्तों अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को अंत करने का। हर सुबह दोस्तों हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी होती है खुद को बेहतर बनाने की। अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी अपने अपनी हेल्थ के लिए निकालते हैं तो कल आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे। छोटी छोटी आदतें जैसे जल्दी उठना, योगा करना, अच्छा खाना, यही मिलकर एक हेल्दी लाइफ बनाती है। दोस्तों इसी के साथ अब इजाजत लेने का समय आ गया है। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। अब आप सुन पाएंगे आपातानित दालिक में समाचार।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अपताने दैलिक में हमारा न्यूज बुलेटिन। और अब वक्त हो चुका है आपके अपना पसंदीदा सेगमेंट का, ये है आपका अपना मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट शो एक नए सवेरे के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू, लेकर आज के दिन का सारा हिस्सा, कुछ हसीन यादें और हमारे अरुणाचल की ताजा खबरें। चलिए सबसे पहले चलते हैं पन्नों को पलटने और देखते हैं कि आज के दिन यानी 9 जुलाई को इतिहास में दुनिया भर में क्या बड़ा हुआ था।

आज ही के दिन 1816 में अर्जेंटीना ने स्पेन से अपनी आजादी का ऐलान किया था। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद उन्हें ये कामयाबी मिली जिसने पूरे साउथ अमेरिका का नक्शा बदल दिया। टेनिस के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंट विम्बलडन की शुरुआत आज ही के दिन 1877 में हुई थी। पहला साल सिर्फ 22 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था और सोचिए आज ये दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस इवेंट है। दुनिया का पहला एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलस्टार 1 आज ही के दिन 1962 में स्पेस में भेजा गया था। इसी सैटेलाइट की वजह से पहली बार ट्रांस एटलांटिक लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट मुमकिन हो पाया था। साउथ सुदन आज ही के दिन 2011 में से अलग होकर सुदन से अलग होकर दुनिया का सबसे नया इंडिपेंडेंट देश बना था। इस नए देश के बनते ही यूएन ने इसे अपना 193rd मेंबर बनाया। सोचिए दोस्तों 1877 में जब पहला विम्बलडन खेला गया होगा तो क्या उन्होंने सोचा था कि एक दिन टेनिस पूरी दुनिया पर राज करेगा। खैर वक्त बदलता है और इतिहास बनता है। चलिए इस खूबसूरत सुबह को एक संगीतमय टच देते हैं, सुनते हैं हमारा पहला गाना।

वेलकम बैक दोस्तों। चलिए अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं हमारे प्यारे भारत के इतिहास को। आज 9 जुलाई को इंडिया में क्या खास इवेंट हुए थे, आइए जानते हैं। भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE आज ही के दिन 1875 में शुरू हुआ था। एक छोटे से बनियान ट्री के नीचे सिर्फ 4 से 5 ब्रोकर से शुरू हुई ये कहानी आज पूरे देश की इकोनॉमी की धड़कन है। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश का पहला 5-ईयर प्लान पार्लियामेंट में पेश किया था। इस प्लान का मेन फोकस एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर था, जिससे आजाद भारत की बुनियाद मजबूत हो सके। और ये इवेंट हुआ था 1951 में। लेजेंडरी फिल्म मेकर और एक्टर गुरुदत्त साहब का जन्म आज ही के दिन 1925 बेंगलोर में हुआ था। प्यासा और कागज के फूल जैसे मास्टरपीस फिल्में देने वाले गुरुदत्त का इंडियन सिनेमा में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।

आज ही के दिन 2018 में सैमसंग ने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हुआ।

दोस्तों बीएसई की शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई और आज वहां अरबों का बिजनेस होता है। ये होता है दोस्तों मेहनत और विजन का असर। चलिए इसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गाना।

0: Hey, Dad, will you tell me something? Where are you going? Are you even listening to me? Are you? Have you ever been? क्या कर रही है छोटी, सारी चाय गिरा दी। देखिए ना बापू, देखिए ना, इसने सारी चाय गिरा दी मेरे ऊपर।
1: भाई गाड़ी ठीक हुई क्या?
2: गाड़ी नहीं करेगा। अरे चाय पिला।
0: क्या कर रहे हो?
2: क्या कर रही है तू?
3: माफ कीजिएगा।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब वक्त है हमारे स्टेट यानी अरुणाचल प्रदेश के आज सुबह की बड़ी और सरगर्म खबरों पर डिटेल में नजर डालने का। आज के न्यूज़पेपर की क्या है आइए जानते हैं। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, टू वर्कर्स डेथ इन लैंडस्लाइड। पहली खबर बेहद अफसोसजनक है दोस्तों। लगातार हो रही बारिश के चलते एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक मिट्टी धंसने से दो मासूम वर्कर्स की मौत हो गई है। इस मौसम में पहाड़ी इलाकों में काम करना बहुत रिस्की हो गया है। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। APEWF urges government within 15 days. अरुणाचल प्रदेश एम्प्लॉयज वेलफेयर फेडरेशन ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन सौंपा है। उन्होंने सरकार से डिमांड की है कि एलिजिबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को अगले 15 दिनों के अंदर लागू किया जाए, जो कि काफी समय से पेंडिंग चल रहा है।

APWWS calls for overhauling recruitment system. Arunachal Pradesh Women's Welfare Society ने स्टेट गवर्नमेंट से एक बड़ी गुजारिश की है. उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम को पूरी तरह से ओवरहॉल यानी बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि हमारे स्टेट के पढ़े लिखे यूथ को उनकी काबिलियत के हिसाब से बिना किसी भेदभाव के नौकरी मिल सके. दोस्तों, वक्त सच में चिंता

जनक है। तो एक तरफ मॉनसून की वजह से लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा है जैसे कई पन्नियों में हमारे लोग परेशान हैं, और दूसरी तरफ हमारे यूथ और एम्प्लॉयज अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द ही बेहतर होंगे। बारिश के इस मौसम में आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए। चलिए आप सबको छोड़कर जाती हूं आज के इस आखिरी और बेहद सुकून भरे गाने के साथ।

0: दोस्तों ये था मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम। उम्मीद है आपको जानकारी के साथ साथ मजा भी आया होगा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन ने सी शुरू उंगल को तागिन प्रोग्राम मखोगी ले यूनिंग अबेन तमगे ने सी राजीव राय इंडिया गला इंडोनेशिया ने बनी टेररिज्म रे नाम सी अलमाया चुकने गो सोंगोलो मोटर दो बरे बम संग बम ला जुकेला मिफालें दो को ओके सम इंटरनेशनल लॉग अरालोक रिचों सुचुंग का दो बरे चंगो दो गोलो मो कु मनंग नो रिबम संगवा में गए बकेला मिफा दो को सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ला प्रेसिडेंट पाबो सुवियंतो बनी जाकर्ता लो जॉइंट स्टेटमेंट को दोंगबाम दोकला सो गामा सो बेपालें दोको सो लीडर अन्य बेफादे नाम ग्लोबली प्रेस्क्राइब टेररिस्ट ओके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सम ला समोलो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लो एजरगुला लगनगुला चांकेगुला अक्कान सेंशन को कमिटी गा सो टेररिज्म रिनाम सम मतरी तोर दो बड़ी बामला जुकेला मिफालें दो को कोचिंग अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मी आलू लोम गलखिंग ब इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट डोंगपाम गा डोंगपाम दुख ब मयो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न रो अंगचनी कुबला में फालें दुखो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन ला मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री गैब्रियल डी वांगसु बनी मीटिंग डोंगपाम को डोंगपाम गई कुला Department of Animal Husbandry and Veterinary Dairy Development for Lesson Alarong Barilin Singlin Gedo Kuba Gama Nga Rorik Birg Sulari Ganyi Kuba La Mifalin Doko So Gedong Pam Su Dairy Development Cool Chain Ok Milk Collection Network Nga Alayasin Doba Ribam Sengpam Doko Ok Livestock Healthcare Nga La Dairy Ok Poultry Sector Sum अलरोंग बरे लेने से लेंगे दुख बड़े बामला जुकेला में फालें दुखो कोले लो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम सेंट्रल टीम गुनी जॉइंट सेक्रेटरी निशिता तिवारी ला डिजास्टर मैनेजमेंट गेस सेक्रेटरी डानी सालू ला लेसन ऑफिसर्स ने अंगे लाइकुला कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट nga angkar la ka kar gan ko ba la me fal lindu ko so team si district lo plus flood

गुड मॉर्निंग ईटानगर, अभी आप सुन रहे थे तागिन दालेक में हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। और आप रेडियो के डायल को बिल्कुल मत छेड़िए, क्योंकि वक्त हो चुका है एक ऐसे सफर का जो आपको ले चलेगा यादों की हसीन गलियों में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम पर सदबहार में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू, और इस सुहाने सुबह में हम लेकर आए हैं गुजरे जमाने के वो नगमे जो आज भी आपके और हमारे दिलों में गुनगुनाते हैं। पुराने गाने, थोड़ी सी बातें और आपके साल महीनों की यादें। लेकिन गानों के सिलसिले को शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं आज के हमारे कैपिटल ईटानगर और पूरे अरुणाचल प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है। आईएमडी यानी मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर के मुताबिक मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी राजधानी ईटानगर की।

आज ईटानगर में आसमान पर पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। आईएमडी के मुताबिक आज शहर और उसके आसपास के इलाकों में एक या दो बार तेज थंडर शावर यानी गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। आज ईटानगर का मैक्सिमम टेम्परेचर तकरीबन 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की उम्मीद है। वही ह्यूमिडिटी का लेवल काफी हाई रहेगा, जिसे थोड़ी उमस महसूस हो सकती है। चलिए मौसम की इस ठंडक में थोड़े से संगीत की गर्मी घोलते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला

वेलकम बैक दोस्तों, सदाबहार के इस सफर में आपका फिर से स्वागत है। क्या बात है दोस्तों, पुराने गानों का नशा ही कुछ और होता है ना, सीधे दिल पर असर करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के मौसम की, क्योंकि आईएमडी ईटानगर ने हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़ी एडवाइजरी और वार्निंग जारी की है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आईएमडी के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश के लगभग सभी यानी मोस्ट प्लेसेस पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। जो सबसे जरूरी बात है दोस्तों, वो ये है कि आईएमडी ने आइसोलेटेड प्लेसेस के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज आंधी बिजली खड़कने की भी वार्निंग दी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से पहाड़ी रास्तों पर फ्रेश लैंडस्लाइड और रॉक फॉल्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लो लाइंग एरियाज में पानी भरने और फ्लैश फ्लड्स की भी चिंता बनी हुई है। खास करके वल्नरेबल हिल एरियाज में रहने वाले लोग बहुत सावधान रहिएगा। दोस्तों, मौसम काफी नाजुक बना हुआ है। अगर आप आज किसी भी पहाड़ी रास्ते पर सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो हो सके तो उससे टाल दे या फिर पूरी जानकारी लेकर ही निकले। रास्ते में अचानक पत्थर गिरने या मिट्टी धंसने का डर रहता है। इस सुहाने पर थोड़े से चिंताजनक मौसम में अपना ध्यान रखिएगा और घर बैठते इस सुकून भरी सुबह में सुनिए ये हमारा दूसरा सदाबहार गाना।

क्या बात है दोस्तों, क्या खूबसूरत नगमा था। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम सदाबहार। दोस्तों, मौसम जैसा भी हो, अगर मन में अच्छे गाने और अच्छी यादें हो तो हर दिन सुनहरा लगने लगता है। सरकारी तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और आईएमडी ने भी सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों और अथॉरिटीज को अलर्ट पर रहने को कहा है। कहीं भी इमरजेंसी हो तुरंत लोकल हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट करें। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी हैं सुरक्षित हैं और मुस्कुराते रहिए। चलिए, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन घबराइए मत, गानों का सिलसिला रुकेगा नहीं। आपको छोड़ जाती हूं ये आखिरी गाने के साथ। दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर कारण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। इस आखिरी गीत के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलोंग केंद्र से समाचार। ये रहा आपका गीत, आप जरूर इसका लुत्फ उठाइएगा।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
0: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक

0: सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपड़ा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
1: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित

0: किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्ता ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Papadkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
3: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
2: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence

0: of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है. हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े. एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है. डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया. यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है. हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले.
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap business event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and

0: नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग से हमारा नेशनल और रीजनल न्यूज बुलेटिन। और अब आसमान में खिलते सूरज की बारिश के साथ वक्त हो चुका है आपके अगला मनपसंद शो का। ये है आपका अपना हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों आज का ये शो बेहद स्पेशल होने वाला है। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि अपने ज्ञान की पोटली को थोड़ा और बड़ा करेंगे। हम जानेंगे दुनिया के एक ऐसे हिस्से के बारे में जो बहुत लंबी लड़ाई के बाद नक्शे पर उभरा। दोस्तों आज यानी 9 जुलाई का दिन पूरे वर्ल्ड मैप के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज से ठीक 15 साल पहले यानी 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान दुनिया का सबसे नया इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। ये यूनाइटेड नेशंस का 193rd मेंबर देश बना। लेकिन इस आजादी के पीछे एक लंबी और दर्दनाक दास्तां है जिसे हम आज डिटेल में जानेंगे, पर पहले हमारे लिसनर के माइंड को फ्रेश करने के लिए सुनते हैं आज की सुबह का ये पहला शानदार गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर। चलिए अब चलते हैं अफ्रीका के उस हिस्से में जिसे आज हम साउथ सूडान के नाम से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नया देश कैसे बना। पुराने जमाने में यानी कॉलोनियल एरा के दौरान पूरा सूडान एक सिंगल टेरिटरी था जिसे ब्रिटिश और इजिप्ट मिलकर चलाते थे, लेकिन उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि उन्होंने नॉर्थ सूडान के डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया, वहां स्कूल्स और रोड्स बनाए, लेकिन साउथ सूडान के इलाके को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जब 1956 में सूडान आजाद हुआ तो सारी पावर नॉर्थ सूडान के अरब मुस्लिम रूलर के हाथ में चली गई। वहीं दूसरी तरफ साउथ सूडान में ज्यादातर लोग ब्लैक अफ्रीकन कल्चर्स के थे जो क्रिश्चियन या एनिमिस्ट बिलीव्स को मानते थे। जब नॉर्थ की गवर्नमेंट ने पूरे देश पर इस्लामिक लॉ और कल्चर थोपने की कोशिश की तो साउथ के लोगों ने इसका विरोध किया। इस भेदभाव की वजह से सूडान में दो भयानक सिविल वार्स हुए। पहला युद्ध 1955 से 1972 तक चला और दूसरा 1983 से 2005 तक। ये अफ्रीका का सबसे लंबा चलने वाला सिविल वार था जिसमें लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग बेघर हो गए। सोचिए दोस्तों, जिस आजादी में हम आज सांस ले रहे हैं उसके लिए दुनिया के कई कोनों में लोगों ने क्या क्या दुख नहीं झेले। साउथ सूडान के लोगों ने लगभग 50 साल तक स्ट्रगल किया, तब जाकर उन्हें उनका हक मिला। ज्ञान का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पर पहले वक्त है एक और खूबसूरत गाने का। सुनते रहिए ट्रैक।

फिर से स्वागत है आपका हेलो ईटानगर में। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव पर चलते हैं कि आखिरकार उन्हें आजादी मिली कैसे। साल 2005 में सूडान गवर्नमेंट और साउथ सूडान

फ्रीडम फाइटर्स के बीच एक हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक साउथ सूडान को 6 साल के लिए ऑटोनॉमी दी गई और ये तय हुआ कि 2011 में वहां के लोग खुद चुनेंगे कि उन्हें आजाद होना है या नहीं। जनवरी 2011 में साउथ सूडान में एक बहुत बड़ा रेफरेंडम करवाया गया और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि वहां के 98.83% लोगों ने आजादी के पक्ष में वोट किया। वो अब और दबाव में नहीं रहना चाहते थे और इसी वोटिंग के बाद आज ही के दिन यानी 9 जुलाई 2011 को दुनिया भर के लीडर्स की मौजूदगी में साउथ सूडान ने अपनी आजादी का झंडा लहराया और सलवा कीर मायदित वहां के पहले प्रेसिडेंट बने। तो दोस्तों आज हेलो ईटानगर में हमने सीखा कि कैसे एक नए देश का जन्म होता है और ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स बदलते हैं। साउथ सूडान आज भी कई चैलेंजेस से झूल रहा है लेकिन उनका इतिहास हमें सिखाता है कि सब्र और संघर्ष से आजादी जरूर मिलती है। उम्मीद है आपको आज का ये एजुकेशन सेगमेंट पसंद आया होगा। अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। जाने से पहले आपको छोड़कर जाती हूं ये कार्यक्रम का आखिरी गीत। ये आकाशवाणी का ईटानगर करुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों इस गीत के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए सुनते रहिए ये आखिरी गीत।

0: कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में और मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। इसके अंतर्गत राज्य में 87,226 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक

गुड मॉर्निंग ईटानगर, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से हमारा नेशनल न्यूज बुलेटिन। और अब दोस्तों चलिए देश दुनिया की संगीन खबरों से बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं उस नगरी की तरफ जहां सपने बनते हैं और बड़े पर्दे पर सच होते हैं। वक्त हो चुका है आपके सबसे चटपटे मसालेदार और ग्लैमरस शो का, यह है आपका अपना फिल्मी कपशप। मैं हूं आपकी आरजे याजू और आज मेरे पास बॉलीवुड की ऐसी ऐसी ताजा खबरें और ऐसी गॉसिप्स है जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगे। पूरा बीट टाउन इस वक्त किन खबरों से हिला हुआ है, आइए जानेंगे। लेकिन पहले इस फिल्मी सफर की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त और एनर्जेटिक गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और गर्म खबर की जो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, वो है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज। दोस्तों ये फिल्म 3 जुलाई को काफी लंबी लड़ाई के बाद Zee5 पर स्ट्रीम हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को इसे इंडिया में एब्रप्टली रिमूव यानी बंद कर दिया गया। इस बात से पूरी इंडस्ट्री हैरान है। फिल्म के राइटर नीरेन भट्ट और एक्टर सुवेंदर विकी ने अभी अभी बयान दिया है कि ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है बल्कि सच को दबाने की कोशिश है। हालांकि काफी सारे सेलेब्स जैसे गुलपनाह और जसबीर जसीद दिलजीत की सपोर्ट में उतर आए हैं और उनका कहना है कि ऐसे फिल्म्स को बर्न करना काउंटर प्रोडक्टिव है। यहां तक कि आप कुछ सिख बॉडीज ने इसकी पब्लिक स्क्रीनिंग रखने का फैसला किया है। कॉन्ट्रोवर्सीज तो चलती रहेंगी। चलिए माहौल को थोड़ा बेहतर बनाते हैं और सुनते हैं हमारा दूसरा गाना।

गाने के बाद फिल्मी मूड और सेट हो गया है। चलिए अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पर चल रहे धमाके की। आलिया भट्ट और सारबरी की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा इस वक्त सिनेमा में धूम मचा रही है। खबर यह है कि दोस्तों फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 70 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। मिडवीक यानी कल वेंसडे को भी इसके कलेक्शन में एक बड़ा जंप देखा गया। आलिया भट्ट का एक्शन अवतार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और YRF का ये स्पाई यूनिवर्स एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर साबित हो रहा है। इस खुशी के मौके पर एक बनता है ये एक और शानदार गाना।

करण जौहर ने इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पूरे 350 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी थिएटरिकल डिस्ट्रीब्यूशन डील बन गई है। नितेश तिवारी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें रणवीर के साथ यश, सई पल्लवी और सनी देओल भी हैं। इंडस्ट्री में इस फिल्म को लेकर इतना क्रेज है कि सभी को लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। चलिए इस ग्रैंड खबर के बाद सुनते हैं एक और अगला गीत।

दोस्तों, जहां एक तरफ बड़ी डील्स हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चल रही है ट्रोल। कल ही राजकुमार राव की नई बायोपिक फिल्म दादा का पहला लुक आउट हुआ, जिसमें उन्होंने सौरभ गांगुली का लॉर्ड्स वाला वो आइकॉनिक शर्टलेस मोमेंट रिपीट किया है। हालांकि सौरभ गांगुली ने खुद इस लुक को काफी अप्रिशिएट किया है, लेकिन इंटरनेट की जनता को ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर राजकुमार को बेहद ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे बेहतर तो चैट जीपीटी दादा का लुक क्रिएट कर देते हैं। खैर, राजकुमार एक बेहतरीन एक्टर है और हम जानते हैं कि वो पर्दे पर कमाल ही करेंगे। चलिए इंटरनेट की इन ट्रोल से दूर चलते हैं, संगीत की दुनिया में सुनते हैं हमारा ये 5th सॉन्ग।

0: बेटा इसने ब्रेकफास्ट के 20 पाउंड दिए हैं टिप इंक्लूडेड। अगर तुम दोनों का प्रॉब्लम नहीं चल रहा होता तो मैंने इसे ऊपर वाला कमरा ऑफर कर दिया था एज ए किराएदार। हर रिश्ते में एक गलती तो माफ होनी चाहिए।
1: Can I have my 20 pounds back?

फिर से स्वागत है आपका फिल्म गपशप में। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं बॉलीवुड की क्लिट्स और ग्लैमर की। कल रात बी टाउन में एक बहुत बड़ी पार्टी थी, अंशुला कपूर की वेडिंग रिसेप्शन, और वहां से जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी है। रणवीर सिंह हमेशा की तरह अपनी फुल एनर्जी में दिखे। वो अर्जुन कपूर के साथ फ्लोर पर ट्यून मारी एंट्रिया और बाकी धुरंधर गानों पर ऐसी डांस मूव दिखा रहे थे कि सब देखते ही रह गए। वही पार्टी में आलिया भट्ट भी पूरे तशन में दिखी और उन्होंने इंटरनेट सेंसेशन ओरी के साथ उनका आइकॉनिक ओरी पोज भी किया, जिसका फोटोज इस वक्त इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, जब पार्टी की बात हो रही है तो एक बढ़िया डांस ट्रैक तो बनता है।

के बाद है दोस्तों मूड पूरा ही फ्रेश हो गया। आइए अब बात करते हैं हमारी बेबो यानी करीना कपूर खान की। करीना और सैफ इस वक्त एक बीच हॉलीडे पर है और करीना ने सैफ की कुछ शर्टलेस फोटो शेयर करते हुए लिखा है हॉट हस्बैंड। 55 की उम्र में भी सैफ का ये लुक देखकर करीना खुद उनकी फैन गर्ल बन गई है और उनकी ये केमिस्ट्री फैंस को बहुत क्यूट लग रही है। वहीं दूसरी तरफ वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी ने एक बड़ा खुलासा किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने जमाने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा इतना कुछ नहीं देते थे, हमें तो फीस एक एनवलप में मिलती थी जैसे कोई भिक्षा दे रहा हो। वेल, जमाना कितना बदल गया है ना दोस्तों। चलिए पुरानी यादों के साथ सुनते हैं हमारा ये अगला गीत।

वेलकम बैक टू फाइनल सेगमेंट ऑफ फिल्मी गपशप। जाते जाते एक फिक्र वाली खबर भी आपको दे दूं। पॉपुलर एक्टर राजेश शर्मा, जो प्रभास के आने वाले फिल्म की शूट के लिए कोलकाता में थे, उन्हें एक जहरीली कीड़े ने काटने की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अभी पूरी तरह से डेंजर से बाहर नहीं है। हम सब उनकी जल्दी ठीक होने की दुआ करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बॉलीवुड की सारी चटपटी और बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन आपको छोड़कर जाती हूं आज के इस आखिरी और बेहद स्पेशल गाने के साथ। अपना ख्याल रखिए, फिल्मी रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम रेडियो। दोस्तों, ये इस गाने के बाद अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए लुत्फ उठाइए इस गीत का।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km.
1: Attention! Pare Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और

0: सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा
1: एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की।
2: हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
3: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्वेडर ने आज मेलबर्न में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्ष में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra

0: समाचार ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। दोस्तों पेश है हमारा अगला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपकी अपनी मर्जी का शो है, जहां माइक मेरा है पर चॉइस पूरी तरह से आपकी है। जी हाँ, वेलकम टू रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: दोस्तों आपके ढेर सारे मैसेजेस मेरे साथ है, तो बिना किसी देरी के चलिए खोलते हैं आपकी फरमाइशों का ये पिटारा और प्ले करते हैं हमारा पहला गाना। हमारी पहली रिक्वेस्ट आई है असम के एक बहुत ही प्यारे इलाके से हमारे बेहद लॉयल और रेगुलर लिसनर हर्षित गोस्वामी, जो हमें बोखाखात असम से सुन रहे हैं। उन्होंने फरमाइश की है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का एक बेहद प्यारा ट्रैक। हर्षित, आपकी फरमाइश पर पेश है ये गाना तेरा रास्ता छोड़ू ना। एंजॉय कीजिएगा।

वेलकम बैक दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। और ये रिक्वेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे एक लिसनर ने हमें मैसेज तो भेजा है पर जल्दबाजी में अपना नाम लिखना ही भूल गए। कोई बात नहीं दोस्त, आपका नाम अनजान है पर आपकी चॉइस लाजवाब है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है जाने क्या चाहे मन। और दोस्तों जब इस गाने का नाम आता है तो जुबान पर एक ही नाम गूंजता है, हमारे अपने नॉर्थ ईस्ट की शान और असम के दिलों की धड़कन जुबीन गर्ग। जुबीन दा सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, वो एक इमोशन है। उनकी आवाज में जो मिट्टी की खुशबू और जो दर्द है वो सीधे दिल को छू लेता है। चलिए हमारे इस बिलवड आर्टिस्ट की आवाज में सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक।

दोस्तों, जुबिंदा की आवाज सुनकर तो सुबह का मजा दुगना हो गया है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अपने स्टेट की तरफ। हमारे एक और डेली लिसनर्स है लोकीनाथ जी, जो हमें नाहरलगन से रोज सुनते हैं। लोकीनाथ ने हमसे रिक्वेस्ट किया है 90s का एक सुपरहिट और पेपिट टाइटल ट्रैक।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो ऑन डिमांड में। आज का अगला मैसेज हमारे एक और रेगुलर लिसनर अमल बसुमतारी जी ने भेजा है। अमल ने एक ऐसी फिल्म का गाना रिक्वेस्ट किया है जो बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। उनकी फरमाइश है लेजेंडरी पेंटर MF हुसैन की फिल्म गजा गामिनी से माधुरी दीक्षित जी पर फिल्माया गया ये बेहद क्लासिक और सुंदर ट्रैक। अमल की रिक्वेस्ट पर मेरी पायल

πόλη. दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला यहां खत्म नहीं होता. आप लोग अपने मैसेजेस और सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे भेजते रहिए. मैं अगले सेगमेंट में आपके और भी गाने लेकर आऊंगी.

Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें।

और न ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा न करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क न करें और न ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन न करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार न करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

वेलकम बैक दोस्तों, गजगामिनी के उस खूबसूरत क्लासिक के बाद अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। ये मैसेज हमें आया है गोलाघाट असम से और इसे भेजा है हमारे तीन बहुत ही लॉयल लिसनर्स ने मिलकर, रोमेश, रुनू और लकी। क्या बात है दोस्तों, आप तीनों की दोस्ती और आपका ये ग्रुप मैसेज देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन आप तीनों यारों ने रिक्वेस्ट किया है फिल्म थानेदार का एक बहुत ही आइकॉनिक और मोटिवेशनल ट्रैक है, जीना है तो हंस के जियो।

दोस्तों चलिए अब रुक करते हैं एक और मैसेज की तरफ जो हमें असम से मिली है। हमारे एक और बेहद लॉयल लिसनर है ज्योति सुरेन जी जो हमें सुन रही है हेलम असम से। ज्योति ने हमसे गुजारिश की है 90s के एक बेहद रोमांटिक और एवरग्रीन गाने की जिसे सुनकर दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। तो ज्योति और हेलम के सभी लिसनर्स के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में पेश है फिल्म अनारी का फिल्म अंश का ये बेहतरीन ट्रैक हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं। दोस्तों आपकी पसंद के गाने बजाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप लोग अपनी फरमाइश मुझे भेजते रहिए।

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, प्यार मोहब्बत की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब जो मैसेज आया है वो पूरे स्टूडियो में एक अलग ही जोश भरने वाला है। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है हमारे बहुत ही लॉयल लिसनर हितेंद्र दास जी ने, जो हमें असम से सुन रहे हैं। हितेंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया है इंडियन सिनेमा का सबसे आइकॉनिक और धमाकेदार गाना जिसे सुनकर बच्चा बच्चा झूम उठा है। जी हाँ, उदित नारायण की आवाज और शाहरुख का वो लाजवाब डांस फिल्म दोन से आप सभी का और हितेंद्र जी का फेवरेट ट्रैक खाई के पान बनारस वाला।
3: अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है। का तुम का बताई, अब का समझाई, बड़ी दुर्घटना है, मुश्किल बचना है। चला ऐसा चक्कर हो, उठ

कि हम कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में

छोरा हो छोरा गंगा किनारे वाला हो छोरा गंगा किनारे वाला।

मिलिए एक सपन लोक अधरों मिलिए यौवन हाला इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो

0: छोरा हो छोरा गंगा किनारे वाला हो छोरा गंगा किनारे वाला।
1: दोस्तों मेरे पास इस वक्त बहुत सारे पेंडिंग सॉन्ग रिक्वेस्ट हैं, लेकिन अफसोस समय की पाबंदी की वजह से मैं आज उन सभी गानों को प्ले नहीं कर पाऊंगी। जिन दोस्तों के गाने आज छूट गई है उनसे मैं दिल से माफी चाहती हूं। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो निर्माण। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता गोलो कालो। दोस्तों कहीं मत जाइएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा। अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे कविता के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।
2: Attention, Pari Hydropower Station under operation.
3: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। विक्टोरिया स्थित गवर्नमेंट हाउस में आयोजित इस सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नए बाजार का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की समानताएं निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।
4: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर।

0: हमारी ये समानता है और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को कठुआ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से दो हथगोले बरामद किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बिलावर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में स्थित इस ठिकाने का पता ओवरग्राउंड वर्कर हाजी लतीफ के से चला। रबागढ़ निवासी लतीफ को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पिछले कई वर्षों से सीमा पार से एक दर्जन से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% के वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, और आज आपने पहली प्रसारण का आनंद लिया आरजे याजू के साथ। और हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ है प्रसारण अधिकारी गैर एत, तकनीकी अभियंता तिमतिम और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी, और मैं आपकी रेडियो साथी कविता आपके साथ हूं इस दूसरी प्रसारण में। अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी लहर, पर उससे पहले आइए झटपट से नजर डालते हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी पर। 11:30 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम वेस्टर्न मेलोडीज। 12 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से

सारे हिंदी और इंग्लिश न्यूज 12:10 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। फौजी भाई बहनों का प्रोग्राम गीत माला आप सुन पाएंगे 12:30 पर। 1 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। 1:10 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 2 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। उसके बाद आप सुन पाएंगे 2:30 पर प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s। 2:58 पर आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस। 3 बजे आप सुन पाएंगे मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गाने आप सुन पाएंगे 3:30 पर। 3:40 पर आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का समाचार। 3:45 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। 4 बजे आप सुन पाएंगे इदुमिशमी श्रोताओं का समाचार। 4:05 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स और 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो हमारी दूसरी प्रसारण में आप सुनने वाले हैं इन कार्यक्रमों को और आइए अब से थोड़ी ही देर में सुनते हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। जी हाँ, प्रार्थना करते वक्त आप सब कुछ भगवान पे छोड़िए और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। और कोशिश करते वक्त आप अपने आप पर ही जोर डालिए कि आपके करने से ही आपकी जो भी काम है वो कोशिश करने से ही पूरा होगा। और आइए शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम फिल्मी लहर, और सुनते हैं प्रोग्राम में ये पहला गाना।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं ये धोखाधड़ी गाना फिल्म आर राजकुमार का। ये एक बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक चुलबुला नंबर है। इसे प्रीतम ने कंपोज किया है और आवाज है अरिजीत सिंह एवं पलक मुच्छल के। आप श्रोता हमें सुन रहे हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर में।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: ये पॉपुलर डांस ट्रैक आपने सुना राधे यो यो मोस्ट वांटेड भाई फिल्म का, इसे गाया था कमल खान और पायल देव ने। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम ऑफ वेस्टर्न मेलोडीज।
1: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
2: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
2: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
2: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमें आकाशवाणी टनल का अरुण FM 103.1 MHz में, और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम ऑफ वेस्टर्न मेलोडीज।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम ऑफ वेस्टर्न मेलोडीज। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और अब से थोड़ी देर में आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति

0: सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India and Australia are true, vibrant democracies, two multicultural societies and two significant ocean powers whose shared values and common worldview continue to strengthen mutual trust between the two nations. Speaking at a joint press statement, along with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, the Prime Minister said the comprehensive strategic partnership has made unprecedented progress over the past few years, and the summit has added new dimensions to bilateral cooperation.
2: Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECAPR, तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
1: The Prime Minister said Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but it also represents the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. He said India and Australia have reaffirmed that cooperation in defense and security is the cornerstone of the partnership in an increasingly complex strategic environment.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों आइए सुनते हैं प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। इस प्रोग्राम में आइए सुनते हैं अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना आ भी जाए मेरे हमदम, जो 2005 में ये जोसी लापो पर रोमांस ट्रैक 2005 की है। लेल्सी लुइस द्वारा ये लिखा गया है, रचित है, और 2000 के दशक के ये बॉय बैंड की धुनों को ये पारंपरिक लोक संगीत धुनों के साथ मिलाकर ये वसंत ऋतु के आगमन और प्रेम का जश्न बनाता है। ये उस दौर के समान लगने वाले जो क्लासिक और सॉफ्ट पॉप गीतों से बिल्कुल अलग है। आइए सुनते हैं ये गाना।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा

0: जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पंकज उदास की ये सॉफ्ट आवाज में आइए सुनते हैं अगला गाना।

0: सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला, जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026।
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे थे नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब समय हो चला है हमारे फौजी भाई बहनों का प्रोग्राम गीतमाला का। आइए सुनते हैं गीतमाला प्रोग्राम में ये पहला गाना फिल्म राजा हिंदुस्तानी से।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों

के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: वाह भाई वाह, क्या बात है। ओ अर्जुन सिंह है, बड़े कमाल का गाता है यार तू तो, मजा आ गया यार कसम से।
1: बजाता भी अच्छा है।
0: अच्छा बजाता है ना?
1: हाँ बहुत अच्छा।
2: लेकिन तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गा रहे थे तुम।
3: जी हम तो सिर्फ गुनगुना रहे थे। और
4: अर्जुन सुना दो यार
1: गाना।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366-693170 या 9402-877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे थे फौजी भाई बहनों का प्रोग्राम गीतमाला। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।
2: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
4: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
3: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व

0: डॉक्टर विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the third India-Australia annual summit. The two leaders hailed a transformative step change in the bilateral relationship, locking in comprehensive frameworks for regional stability, energy security and technological innovation. Prime Minister Modi declared that the bilateral partnership is a definitive bond built for the future. Addressing the media, he highlighted that the relationship has entered an expansive era anchored in deep mutual trust. A major highlight of the summit was the significant momentum given to economic and trade integration. Building on the success of the 2022 Economic Cooperation and Trade Agreement, the two nations have committed to fast-tracking a balanced, ambitious and mutually beneficial comprehensive economic cooperation agreement alongside a bilateral investment treaty. In a massive breakthrough for energy security, a critical agreement was signed to pave the way for long-term Australian uranium supply to India, injecting major strength into India's clean energy objectives. This complements the thriving renewable energy partnership under which both nations have jointly established a rooftop solar training academy in Gujarat to empower women and youth. Strategic technology and resource security also reached new heights with the operationalization of the Australia-India partnership on cyber critical technologies and supply chains and a dedicated critical minerals corridor. To secure the Indo-Pacific, the leaders issued a historic joint declaration on defense and security cooperation, launching a maritime security collaboration roadmap and an innovative defense innovation corridor to connect startups and industries. Prime Minister Albanese underscored that the relationship has never been more consequential or dynamic.
2: Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CECAPR, तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता दोस्तों, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे होती है। फोन नंबर है 03602292239 यानी 03602292239। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश। नमस्कार खम्मा घड़ी सा।
2: नमस्कार खम्मा घड़ी, कैसे हो?
3: बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया एकदम।
2: बढ़िया है
3: आप बताइए।
2: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
3: जी
2: और
3: जी।
2: मौसम का हाल क्या है?
3: मौसम के भी गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है 45 के आसपास।
2: बाप
3: रे, कड़ाके वाली गर्मी पड़ रही है।
2: जी जी जी जी।
3: और मैं तो देखिए ये है कि बेताब रहता हूँ इस फोन इन प्रोग्राम के लिए कि कब पोके बागरा जी से बात हो, कब फरमाइशी गीत बजे। और मैं तो कई अरसे से, कई सालों से आपके आकाशवाणी ईटानगर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: कई दोस्तों की मंडली थी वो तो कहीं ना कहीं तक कम हो गई, कहीं अपने अपने काम धंधों में फंसे हुए, कोई अपनी फैमिली को रिलेटेड समस्याओं में फंसे, कोई कोई अपने धंधे अपने बिजनेस में फंसा हुआ। लेकिन मैं नहीं भूलता, मुझे सुनना आया।
2: क्या बात है, क्या बात है, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी तरह से ये
3: और मैं नाम नहीं बताया मैंने, मैं भवानी सिंह राठौड़ सुजानगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ। आपका नियमित होता
2: है? जी जी जी, मुझे तो पता है।
3: लेकिन आज मैं ना इस प्रोग्राम में चलो, मैं फेवरेट गानों में ना एक कुमार सानू अलका याग्निक का कोई दोनों का मैच करता हुआ गाना हो ना।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जरूर। मैं
3: और ये गाना आपको और पूरी आकाशवाणी परिवार को डेडिकेट है मेरी ओर से।
2: ओके, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश
1: जी प्यार भरा नमस्कार सर जी।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से। जी
1: मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करो सर जी।
0: गौतम राय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और
1: जी
0: सुनाइए।
1: धन्यवाद सर जी। बहुत
0: जी सुनाइए, कैसे हो आप?
1: मजे में सर जी, लेकिन हमारे यहाँ भीषण गर्मी चल रही है अभी।
0: ओके जी।
1: आप 45 से 46 डिग्री तापमान सेल्सियस चालू है सर जी अभी।
0: बाप रे। जी। तो
1: हाँ,
0: धूप से
1: इसी गर्मी के मौसम में बस सहारा था आपका ईटानगर आकाशवाणी मिल रहा है सर जी। बस
0: क्या बात है
1: बस बस
0: जी
1: आपके आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनना और बस घर में बैठ के। बिल्कुल
0: ओके जी। धूप से बचिए, बाहर अगर काम ना हो तो ना निकले।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर
0: जी
1: जी, यही तो हम आकाशवाणी की जानकारी भी सुनते हैं सर जी,
0: जी
1: इसी
0: जी जी हाँ
1: बात
0: जी
1: के लिए। हाँ सर जी,
0: जी
1: मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: जी मेरा नाम है बोके बागरा।
1: जी जी धन्यवाद सर जी। हमारा हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है, तो
0: जी जी हाँ जी।
1: हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप में आकाशवाणी ईटानगर का फोन नंबर डाला जाता है,
0: अच्छा जी।
1: ताकि इस फोन नंबर को देख के सभी साथी आपके आकाशवाणी ईटानगर को फोन लगे,
0: जी हाँ जी हाँ जी। कब
1: और
0: कब
1: जिन
0: रिकॉर्डिंग
1: साथी
0: होती है?
1: और जिन साथियों के फोन लगते, उनको अगर किसी कारणवश प्रोग्राम सुनने को नहीं मिला तो उनकी रिकॉर्डिंग हम हमारे ग्रुप में डालते सर जी,
0: अच्छा, ग्रुप में भी डाल देते हैं आप?
1: बिल्कुल, ताकि
0: वाह जी
1: वो सुन सके। ये
0: जी जी जी बहुत ही अच्छी बात है ये तो। जी
1: हमारे पूरे भारत में सबसे ऊपर हमारे एक्टिव श्रोता है आकाशवाणी आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम सुनने वाले और कार्यक्रम में फोन लगाने वाले सभी
0: जी जी जी
1: एक्टिव
0: जी
1: श्रोता है सर जी।
0: जी सभी श्रोताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। तो गौतम जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: खास करके तो आज हमारा मित्र लोकेंद्र वर्मा जी और अल्ताफ हुजरे सर जी, सभी हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप श्रोता साथियों के लिए
0: जी
1: मकसद फिल्म का गाना सुनना सुनवाना चाहता हूँ सर जी।
0: ओके। मकसद फिल्म का कौन सा गाना?
1: वही गाना है किशोर कुमार यश जानकी की आवाज में, संगीत बप्पी लहरी का, और गीत के बोले हाय हाय हाय गर्मी है कहाँ है। बिल्कुल
0: ओहो, गर्मी के मौसम में गर्मी वाला गाना ही आप सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, सबसे पहले
0: जी
1: तो इस गीत का आनंद आप भी लीजिए सर जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: सुस्पष्ट आवाज में आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र अमरावती जिले में सुनाई देते हैं,
0: क्या बात है। जी। हाँ जी
1: बहुत ही सुस्पष्ट आवाज में सुनाई देते हैं सर जी।
0: ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी।
1: और हम बहुत सारे हमारे गांव के रहो या हमारे ग्रुप को, सभी साथियों को हम प्रेरित करते हैं कि आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम सुनो, बहुत अच्छे रहते हैं, जानकारी भी
0: जी
1: अच्छी रहती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए।
1: जी जी सर
0: तो
1: जी,
0: गौतम जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश,
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: मैं काठार जिला से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल वर्मन।
0: जी। जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: हाँ, थैंक यू सर। मेरा प्यार भरा नमस्कार लीजिए
0: जी। हमारी ओर से भी आपको बहुत ही प्यार भरा नमस्कार।
1: आपके
0: और
1: साथ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में
0: जी
1: थोड़ा सा बात करने का मौका मिलता है तो दिन भर मन अच्छा रहता है
0: क्या बात है जी, हमें भी
1: और
0: बहुत ही अच्छा
1: मन में
0: लगता है
1: खुशियाँ भी बढ़ जाता है सर।
0: जी। और सुनाइए, क्या चल रहा है अभी?
1: अभी तो सर थोड़ा काम काज चल रहा है क्योंकि बारिश का मौसम आ गया ना,
0: जी हाँ जी,
1: तो हाँ, तो बारिश का मौसम आ गया तो थोड़ा सा घर का काम तो
0: हाँ
1: रहता
0: जी, हाँ
1: है।
0: जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ,
0: जी।
1: तो
0: तो आज कैसा है मौसम? आज बारिश हो रही है कि धूप?
1: मौसम नहीं सर, आज कल रात भी बारिश नहीं हुआ।
0: अच्छा, बारिश हुआ नहीं ना अभी? ओके
1: नहीं सर,
0: ओके, हाँ जी। तो कहिए, आज जवाहरलाल जी कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज महान संगीतकार राहुल देव बर्मन जी का सुर में सजा या दिल धड़कने वाला एक गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा जी, हाँ जी।
1: वो गाना लिखा है महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी ने। हम किसी से कम नहीं फिल्म से
0: ओके।
1: आशा जी और रफी जी के जुगल स्वर में वो गाना, ये लड़का हाय अल्लाह
0: हाय
1: कैसे है
0: अल्लाह, कैसा
1: दीवाना,
0: है दीवाना।
1: कितना
0: जी।
1: मुश्किल है तौबा किसको समझाना, धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते प्यार होता
0: प्यार
1: है।
0: होता है।
1: जी
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: वो
0: हाँ
1: गाना
0: जी,
1: सुना दीजिए।
0: हाँ जी जी
1: राहुल
0: जी
1: देव बर्मन दा का सजाया हुआ जंत्र संगीत का सुर एक अलग तरीका से सुर का जंकर होता है।
0: जी
1: जी हाँ, गाना में बर्मन दा का वो सुर बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने वो गाना में सुर डाला है। मुझे
0: जी
1: वो गाना सुना दीजिए और
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: आप अच्छा रहे, सुस्त रहे, ये
0: और
1: शुभ कामना करते हैं।
0: डेडिकेट कीजिए।
1: आओ सरी,
0: हाँ जी,
1: डेडिकेट तो करना चाहता हूँ सर,
0: हाँ
1: पहले
0: हाँ
1: आपके
0: बहुत
1: और भाई
0: धन्यवाद।
1: प्रेमजीत चक्रवर्ती है, आशुतोष देवनाथ है, भुवन संगीता देवनी, अविनाश भैया है
0: हाँ,
1: और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए
0: सभी
1: सर।
0: को आप सुनाना चाहते हैं
1: जी हाँ, जी हाँ,
0: जी। जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का
1: हाँ
0: गाना।
1: धन्यवाद सर। हाँ
0: ओके,
1: सर।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार जी, नमस्कार
0: जी, नमस्कार। और कहिए, कैसे हैं आप
1: जी। मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: जी? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और मौसम भी बढ़िया होगा आपके वहाँ पे सिक्किम में?
1: मौसम तो बारिश हो रहा है इधर, तो अभी
0: अच्छा
1: थोड़ी देर
0: अच्छा
1: रुक
0: अच्छा
1: गया है अभी तो जी
0: ओके। हाँ, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो ही रही है जी,
1: जी
0: मौसम बहुत ही बढ़िया है। तो हो जाए
1: जी
0: परिचय
1: मैं सिक्किम से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ।
0: जी। अर्जुन
1: अभी
0: प्रधान
1: तो
0: जी
1: जानते होंगे
0: जी हमारे प्रिय श्रोता, सभी लोग तो जानते ही हैं, फिर भी नाम तो बताना
1: जी
0: जरूरी होता है ना।
1: जी
0: जी जी
1: परिचय
0: जी
1: तो देना
0: हाँ जी
1: पड़ता है ना
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी।
0: तो अर्जुन जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: अभी तो ये बारिश का सीजन शुरू हो रहा है ना, अभी
0: जी जी
1: तो बरखा याम यानी कि रेनी सीजन बोलते हैं
0: जी
1: ना,
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: वो शुरुआत हो चुका है। और इसी उपलक्ष्य में सुना दीजिएगा मोरा प्रेम से टिपू टिपू बरसा पानी।
0: ओके। टिप टिप बरसा पानी, वहां तो पानी बरस ही रहा है। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी सबसे पहले तो आपके लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।

0: धन्यवाद जी। और पूरे ईटानगर परिवार पर डेडिकेट है।
1: जी
0: और हम मेरा दोस्त है श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से, लुकिंदा वर्मा जी है, मूलचंद लोधी जी है, गौसराज लोधी जी है, ओम प्रकाश जी है, और हरिनारायण गुर्जर जी है, दीपेन कटारी जी है, गोलू कुमार जी है, गणेश दास जी है, बिहार से विमल ऋषि जी है, और हमारे पूनम जी कानपुर से हैं,
1: जी।
0: और हमारे मागीलाल चंदेल भैया जी हैं, है ना, और जितने भी दोस्त हैं सभी के लिए
1: सभी को
0: डेडिकेट
1: आप
0: है मेरे
1: जी
0: तरफ
1: सुनाना
0: से।
1: चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी कॉल करने के लिए। सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना कॉल करने के लिए।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: जी। ओम प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, सुनाइए।
1: बहुत अच्छी है सर, बस गर्मी पड़ रही है सर ज्यादा।
0: ओके, थोड़ा गर्मी से बच के रहिए ताकि आपको।
1: 44-43 चल रहा है हमारे यहाँ।
0: जी, ये तो भयंकर गर्मी है,
1: जी
0: तो गर्मी से बचिए और पानी खूब पीजिए।
1: जी
0: जी, और घर में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए।
1: जी सर, आपका प्रोग्राम सुनती रहती है सर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ओम प्रकाश जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं।
1: आज हम सुनेंगे प्रेम कहानी, फिल्म का नाम है,
0: हाँ जी।
1: और गीत के बोल है, फूल आस्था फेंको बड़े नाजुक होते हैं।
0: ओहो, बहुत ही बढ़िया गीत।
1: जी,
0: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को।
1: हम सुनना चाहेंगे शारदा प्रसाद प्रजापति है जी मथुरा से, उल्लूकेंद्र वर्मा जी हैं, और भी लोग हैं, बहुत से मित्र हैं सर।
0: अच्छा, सभी मित्रों को आप डेडिकेट करना चाहते
1: जी,
0: हैं इस गीत
1: सभी
0: को।
1: मित्रों के लिए है, डेडिकेट करती हूँ आपके
0: ओके,
1: लिए भी सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी डेडिकेट करने के लिए। तो ओम प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: खुद घायल होते हैं फूल आहिस्ता फेंको।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: हरी नारायण गुजर बात कर रहा हूँ सर।
1: हरी नारायण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ सर।
1: और मौसम?
2: मौसम तो गर्मी का
1: है
2: सर।
1: गर्मी है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
2: गर्मी बहुत पड़ गई सर।
1: ओके, तो थोड़ा धूप से बचिए।
2: बचने का तो सर कोई चांस ही नहीं है।
1: चांस ही नहीं है। ओके ओके, बाहर तो निकलना ही है।
2: बचने का तो कोई चांस ही नहीं है।
1: जी जी जी,
2: निकलना तो है धूप में, मगर थोड़ा ऐसा आता है कि जैसे सुबह के टाइम में जल्दी घर आ जाते हैं, फिर शाम के टाइम में थोड़ा लेट निकलते हैं घर से।
1: हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छी बात है।
2: ये बचाव अपना रहता है बस।
1: जी जी जी जी,
2: गर्म हवाएं बहुत तेज चलती है दोपहर में।
1: ओके, तो घर में रहिए और हमारा आकाशवाणी ईटानगर का हेलो फरमाइश सुनिए।
2: वो तो सुनता रहूं, इनको इतना को सुनते रहते हैं।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: और सर आपसे बात होती तो और भी आनंद आ जाता है।
1: क्या बात है, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है जी।
2: सर बहुत बुरा नाम है सर आपको, मजा आता है मेरे को बात करने में। आपको फरमाइश बता देता हूँ सर।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी।
2: फिल्म का नाम है मेरी बीवी का जवाब नहीं, और गाने का टाइटल सॉन्ग है सर ये।
1: अच्छा, मेरी बीवी का जवाब नहीं,
2: वो लाजवाब ही है। जवाब रही है।
1: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को आप?
2: सर दोस्त है दिल्ली से, रणवीर जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, नरेश प्रजापति जी हैं, इसके अलावा गया लोधी, मंगला चंदेल जी हैं और प्रेमराज विश्वकर्मा जी हैं। सर आप भी हमारे साथ इस गाने को सुनिए, बड़ा
1: जरूर
2: मजा आएगा।
1: सुनेंगे। ओके, जरूर सुनेंगे, कभी सुना नहीं मैंने ये गाना, तो इस
2: जी
1: बार
2: आप
1: पहली
2: सुनिए
1: बार
2: जरूर।
1: सुनूंगा जी। तो हरिनारायण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
2: ओके सर, धन्यवाद।
1: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी। शुक्रिया,
0: जी तुकाराम यादव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी,
1: धन्यवाद।
0: और कैसे हो आप?
1: आप ठीक है? आप कैसे सर जी?
0: जी मैं तो बढ़िया हूँ। आपके
1: अब
0: वहाँ
1: आपका
0: मौसम कैसा है
1: ईटानगर
0: अभी?
1: मौसम क्या? गर्मी बहुत है अभी,
0: गर्मी?
1: हमारे थर्टी
0: ओके,
1: एट थर्टी फोर्टी तापमान
0: बाप
1: रहता है
0: रे।
1: हमारे इधर
0: ओके, तो गर्मी से थोड़ा बचिए।
1: जी।
0: और काम ना हो तो घर पे रहिए और हमारा आकाशवाणी ईटानगर का हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिए।
1: हाँ सुनते मोबाइल ऐप
0: ओके, ऐप पे सुनते हैं आप। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुना है?
1: फिल्म बना हुआ कारवा
0: ओके, कारवां फिल्म का कौन सा गाना?
1: गोरिया कहा तेरा देश रे।
0: ओ जी, बहुत ही बढ़िया गीत सुना है आपने। और किन लोगों को सुनाना
1: सबसे
0: चाहेंगे इस गीत को?
1: पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद जी।
1: हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम रायबोले जी, सुनील झा जी, दिलीप पहुजा जी, गंगाधर सावनकर जी, पी एस आई राजशेळके जी, विठ्ठल पवार जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाडे जी, विकास शेळके जी, श्रीकांत भंडारे जी, हम सब एक गीत सुनना चाहते हैं।
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं। तो तुकाराम जी, कॉल
1: शुक्रिया
0: करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश,
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। सर, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: जी भगवान सिंह जी, काफी दिनों के बाद आपने हमें कॉल किया।
1: हाँ सर, बहुत सारे दिन हो गए सर, 5-6 महीने से ऊपर हो गए
0: हाँ
1: सर।
0: जी, हाँ जी, हाँ जी। कहीं बिजी थे आप?
1: जी सर, मकान बन रहा था इसलिए बिजी थे सर।
0: ओके ओके ओके जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बन गया या फिर अभी?
1: सर कंप्लीट हो गया है, हमने कृषि फार्म पर खेत पर बनाया है
0: ओहो, क्या बात है, क्या बात
1: जी।
0: है जी।
1: सर इस वक्त तो सर हमारे इधर 40 टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी बहुत काफी पड़ रही है सर हमारे इधर
0: बाप रे। जी,
1: जी, और लू भी चलती है दिन में सर।
0: ओहो, बात
1: जी हाँ सर,
0: है।
1: पानी का ज्यादा पीते हैं और गमछे वगैरह बांध के खेत पर निकलते हैं, गर्मी
0: ओके
1: का पूरा ख्याल रख रहे हैं अपना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते, खम्मा गणी हुकम।
0: नमस्कार खम्मा गणी।
1: कैसे हो सर जी?
0: जी बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
0: ओके मोहनलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी, शामिल करने के लिए भी धन्यवाद
0: जी। और गर्मी?
1: हाँ, तो 45 डिग्री के आसपास है और अभी आंधी का अलर्ट भी हो चुका है।
0: ओके बाप रे जी जी जी
1: जी
0: जी
1: आंधी, और आंधी आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी।
0: अच्छा, अभी तक बारिश हुई नहीं आपके वहाँ?
1: नहीं, बारिश तो 2 महीने कम है, लेकिन अभी मतलब आंधी आती रहती है।
0: अच्छा, जी जी जी जी तो अपना ख्याल रखिए और कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं।
1: फिल्म का नाम है सर जी उपकार। उपकार का कोई भी गीत
0: उपकार फिल्म का कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी।
0: जी जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: मानक दरिया उषा बाला देवी प्रजापत और हेलो फरमा शेर का रेडियो के तमाम साथी।
0: तमाम साथियों को आप सुनाना चाहते हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनते हैं आपके पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट से। मेरा गांव का नाम है लाला बाजार।
0: जी
1: ईटानगर तो हम लोग सुनते भी है
0: अच्छा।
1: मीडियम में, तो हेलो फरमाइश 8 बजे देता है ना।
0: हाँ जी हाँ जी सही कहा।
1: मैं सुनता हूँ और आज नंबर लेके फोन, कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लाइन
0: अच्छा
1: नहीं मिल रहा है।
0: जी, काफी लोग कॉल करते हैं ना, इसीलिए लाइन बिजी रहता है। जी जी
1: हमारे
0: जी
1: आसाम से तो बहुत लोग करते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी हाँ जी, बहुत लोग सुनते हैं आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो आपका नाम जान सकता हूँ मैं?
1: मेरा नाम है रानतो पुरुकायस्तो।
0: रानतो पुरकास्टो। ओके, और आप क्या क्या प्रोग्राम सुनते हैं रानतो जी हेलो
1: ईटानगर
0: फरमाइश
1: का
0: से?
1: तो हिंदी गान का प्रोग्राम ज्यादा सुनते हैं।
0: अच्छा, गाना आपको बहुत ही पसंद है।
1: गाना बहुत अच्छा लगता है,
0: ओके जी।
1: नया नया गाना सुनाई देता है।
0: हाँ जी
1: और
0: हाँ जी
1: कुमार सानू जी, उदित नारायण जी का कभी गाना सुनता हूँ, अच्छा लगता
0: ओके।
1: है।
0: अच्छा, आपके फेवरेट
1: और
0: फेवरेट सिंगर है कुमार शानू, उदित नारायण?
1: कुमार सानू, उदित नारायण, अरिजीत सिंह,
0: अच्छा, जी
1: अरमान मल्लिक, ये सब।
0: ओके।
1: आज कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ, ईटानगर से बात करूंगा, ईटानगर से बात करूंगा, लेकिन आज तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ
0: जी आपका पहला कॉल है, फर्स्ट कॉल। जी
1: गया।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: फर्स्ट
0: तो रानतो जी,
1: कॉल।
0: आप सिर्फ हिंदी गाना सुनते
1: देवजीत
0: हैं या
1: भाई
0: फिर
1: ने मुझे फोन नंबर दिया है, देवजीत।
0: अच्छा, देवजीत दान ने दिया आपको? ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे से आप हमें कॉल करते रहेगा।
1: हम लोग कॉल करेंगे।
0: ओके
1: बंगाली आता है आपको?
0: हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ मैं,
1: अच्छा
0: समझने में समझता हूँ जी।
1: ठीक है। हमारे माने नमस्कार रोइलो आप अपना रास्ता से। अच्छा
0: ओके ओके, आमियो नमस्कार करछि आपनाके। हाँ
1: तो आज के गान सुनबो।
0: हाँ छबीर
1: गाना
0: नाम
1: सुनना है दिल है तुम्हारा।
0: दिल है तुम्हारा फिल्म का गाना।
1: दिल है तुम्हारा फिल्म का गाना है, मस्ताना मौसम है।
0: ओके जी। ओके, मस्ताना मौसम। मौसम कैसा है आपके वहां पे?
1: हमारे यहाँ तो आज धूप खिल रहा है, कल
0: अच्छा, धूप खिला
1: बारिश
0: हुआ
1: हुआ
0: है।
1: था।
0: अच्छा, तब तो मस्ताना ही है
1: मौसम
0: मौसम।
1: बहुत सुहाना है, अच्छा है,
0: ओके ओके ओके।
1: और ज्यादा गर्मियों में नहीं है। हाइलाकांदी
0: ओके,
1: में आए थे कभी?
0: नहीं कभी जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कभी
1: अच्छा, कभी मौका मिले तो
0: जी।
1: हाइलाकांदी में घूमे के जाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और रानतो जी,
1: किस
0: इस गीत
1: भाई
0: को
1: ने
0: आप
1: लिखी है
0: किन लोगों को
1: ये
0: सुनाना चाहते हैं?
1: गाना? तो हम देवजीत भाई को विशेष कर सुनाना चाहते हैं।
0: ओके
1: और ईटानगर केंद्र में तो हम फास्ट फोन किया, जो लोग ईटानगर सुनते हैं सभी कॉलर को हम ये गान डेलीगेट करते हैं।
0: ओके ओके ओके जी। तो रानतो जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना
1: आप
0: सुना रहे हैं।
1: भी ये गाना सुनना,
0: हाँ जी, मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ।
1: ठीक है? तो
0: ओके
1: रास्ता
0: ओके ओके, कॉल करने के

0: हेलो फरमाइश।
1: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो फरमाइश। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी टानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।
2: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
3: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
2: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
3: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
2: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
3: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
2: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
3: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
4: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s के साथ।
2: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्य।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines: India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia-India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. Monsoon covers entire country. Incessant rain affects normal life in national capital region. Uttarakhand becomes fully literate state after achieving prescribed adult literacy benchmarks under national education policy. And Indian contingent announced for Pickleball World Cup 2026 to be held in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne today, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. Both Prime Ministers delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the summit. They hailed a transformative step change in the bilateral relationship, locking in comprehensive frameworks for regional stability, energy security and technological innovation. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the leaders signed a landmark joint declaration on defense and security cooperation, institutionalized and an annual defense ministers dialogue, and launched a unified maritime security collaboration roadmap. Describing India and Australia as vibrant democracies and important ocean powers, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
4: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
3: Addressing the media, the Prime Minister highlighted that the relationship has entered an expansive era anchored in deep mutual trust. A major highlight of the summit was the significant momentum given to economic and trade integration.
4: Comprehensive Economic Cooperation Agreement, यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए balanced, ambitious और

0: men's and women's category to represent India in the pro category at the Pickleball World Cup 2026. The competition will be held at Da Nang in Vietnam from August 30th to September the 6th. Harsh Mehta, a recurring name on the international pickleball circuit, will be leading the charge. Arjun Singh, Anish Walian and Aman Patel have also made the cut in the men's category. Mihika Yadav, Alia Ibrahim, Pearl Amal Sadiwala and Naomi Amal Sadiwala will make up the contingent on the women's side. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% up in the afternoon session today. The Sensex climbed 565 points to 77,069, while the Nifty added 168 points to 24,050 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia signed landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia and India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया मॉनसून पूरे देश में सक्रिय लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है एजेंडा वनडे जैसा फोकस है डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए
3: पीएम

0: सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
0: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने

0: के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
0: प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था। रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना

गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s में। हिट्स ऑफ 90s में आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम का ये पहला गाना।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s, और हिट्स ऑफ 90s में आप सुन रहे हैं ये मन्या फिल्म का ये गाना। आवाज है उदित नारायण एवं अलका याग्निक की। मन, ये फिल्म बनी थी 1999 में। रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे इंद्र कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में आमिर खान और मनीषा कोइराला ने लीड रोल्स निभाई हैं, जो दूसरी बार एक साथ नजर आए हैं। फिल्म में अनिल कपूर, शर्मिला टैगोर और नीरज बोहरा भी हैं, जबकि रानी मुखर्जी ने एक विशेष भूमिका निभाई है।

0: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप लुफ्त उठा रहे हैं 90 के दशकों के कुछ बेहतरीन गाने और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अंजाम फिल्म का ये गाना, अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक, विनोद राठौर, उदित नारायण के आवाजों में।

Mustafa, Himani Shivpuri, Farida Zalal और सईद जाफरी सहायक रोल्स में हैं। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना सोनू निगम एवं अलका याग्निक की आवाजों में।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: के एस चित्रा एवं हरिहरन की आवाज में आपने सुना जिद्दी फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s में, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे 2:58 पर न्यूज हेडलाइंस। उसके बाद आप सुन पाएंगे 3 बजे मिस मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम, और उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे 3:30 पर प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गानों के साथ। तो हमसे जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz सुनते रहिएगा।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खाओ एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप हंगसा सी एस आई आर यू जी सी नेट जून सोहिंग साहो मई औसी पुटपय कन हमा यू जी सी नेट एग्जाम ने कचम सिपचेट वन खनसम सिपेट वन नई तक पिन मा एम सी आई खाओ लौखमा जिला हंगचा सियांग ईस्ट सियांग लोअर दिबांग वैली लोहित नमसाई खनसम जिला तिराप मई ऑरेंज अलर्ट फाटे फानंग खनसम फुनलोंग तक्तो हेंगलोंग मा यो नम हो चाहंग मनै खनसम चाहंग मनै कौखाम तिखाइनाय नम हो मेने मुउइ खाम मै लुकचाउ तेवा एनलिंग मै हने थोम तिखा

आप सुन रहे थे ताए खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब समय हो चला है हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गानों का। बॉलीवुड अपडेट में आइए आइए सुनते हैं बॉलीवुड की खबरों को, जिसमें है टीवी रियलिटी शो से निकलकर अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा चुके राघव जुयाल अब बतौर लीड हीरो अपनी पहली फिल्म भाई तेरा स्टार है लेकर आ रहे हैं। फिल्म का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। राघव की तगड़ी कॉमेडी वाली ये फिल्म 30 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी स्टारर कॉमेडी फिल्म धमाल 4 इस शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार हैं, मगर स्टार्स की भीड़ वाली अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल भी थिएटर्स में है। धमाल 4 को हिट फ्रेंचाइजी से आने

फ्री स्टारर कॉमेडी फिल्म धमाल 4 इस शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार हैं, मगर स्टार्स के भीड़ वाली अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल भी थिएटर्स में है। धमाल 4 को हिट फ्रेंचाइजी से आने

क्रूशियल का क्रूर किरदार निभाने वाले एक्टर कमलजीत सिंह ने खुलासा किया है कि उन्हें इस रोल के लिए सबसे बड़ी तारीफ सीनियर एक्टर नसरुद्दीन शाह से मिली। एक्ट्रेस कुछ महीनों पहले इंडिया लौटी और एक बार फिर से अपना फैशन फॉलो कर रही है। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने कैरियर और परिवार को लेकर बात की। इंटीमेट सीन में नहीं हिचकी एक्ट्रेस, बोल्डनेस से मचाया हंगामा। इस पूरी खबर को आप देख सकते हैं आज तक के बॉलीवुड सेगमेंट में। दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। G5 से अचानक हटाए जाने के बाद अब पॉपुलर फिल्म रेटिंग वेबसाइट IMDb से सतलुज की दमदार 9.5 रेटिंग भी गायब हो गई है। इस पर बॉलीवुड डायरेक्टर संजय गुप्ता ने तीखा रिएक्शन देते हुए IMDb को फर्जी बता दिया है। मलाइका सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है और अपनी तस्वीरों से फैंस को सरप्राइज करती रहती है। इन दिनों वो वैकेशन के लिए ग्रीस गई हुई है। टीवी और बॉलीवुड एक्टर मनीष पॉल की मां उर्मिला पॉल का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। मां को खोने के बाद मनीष ने इंस्टाग्राम पर बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसे पढ़कर फैंस भी भावुक हो गए हैं। आलिया भट्ट और शर्वीर स्टारर स्पाई फिल्म अल्फा का बॉक्स ऑफिस पर दम निकलता नजर आ रहा है। ब्लॉकबस्टर यूजर के रास्ते टिकट ऑफर का कोई खास फायदा न मिलने के बाद छठे दिन यानी बुधवार को फिल्म के कलेक्शन में और बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आलिया के इस फिल्म पर फ्लॉप होने का खतरा मंडराने लगा है। शाहरुख ने मराठी फिल्म देओलबंद 2 को सक्सेसफुल बनने में मदद की थी, लेकिन कुछ लोगों को उनकी मदद के पीछे पॉलिटिक्स नजर आई। ट्रोल्स ने एक्टर को लेकर हिंदू कल्चर वाली फिल्म की मदद करने पर सवाल उठाए। ऐसे में उनके बचाव में अब फिल्म के डायरेक्टर खड़े उतरे हैं। आइए सुनते हैं MS धोनी फिल्म का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए थे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और आप सुन रहे थे साथ ही हिंदी फिल्मी गाने। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी टांगा के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का समाचार।

ईज आकाशवाणी ईटानगर अं जुलाई लेन मी आकू तारीख बृहस्पतिवार इंपोहसों आसम्बा जी पूी मिनट मुख विषम किम वांचो सायका पौ कपई पौवा कहवा पाए फाले वंगसुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही ऑस्ट्रेलिया देश प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बानेस नी ए अनि होथम आजमंगपा इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल सबमिट टू सो आशुक्य फै विक्टोरिया होनोई मक्या गवर्नमेंट हाउस मा होखी जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट जांगवन का सेले कहुमा अजंग बाजा सबमिट टू सो मा इंडिया अंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन मोर्चा थान पक मा ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम सप्लाई होजुलो ले यफातोन अंक्या जूम क्या फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट का अपन तो टिपसिंग लाई जा क्या बो मा ऑस्ट्रेलिया हिया इंडिया नी ए टाटा फे आशम थमले मोकसा अंक्या साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स पोमा क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर मोथो चु हो वंग वांगले दूसो मजा बो मा लीडर्स नी ए इंडो पैसिफिक जंग मा तुवान तुमैलम खौल जिंगले थम अंक्या जु मक्या डिफेंस या सिक्योरिटी कोऑपरेशन हानपक मकेता खटखा क्या जो जॉइंट डिक्लेरेशन तो चु टिपसिंग लाइ जाले अरुणाचल प्रदेश के पान्यो डिस्ट्रिक्ट मल्ले एन के लेट निचा आली तारीख नि है क्या टीचन मूल मा साम क्या खनक थम मखंग ए मिहोक आली अंगपा खनक मंग मनी अतक दो बोमा हजा खनक ताउ अंजिना ले अमन क्या जंग पोंपुनी आजोक मोइन के मि चंगले कहोमा अजंग बा मनी अतक के हजा मंग तो खंग ए आथत कोले हजा टीचन मूल मा साम क्या मिहोक आगा खनक चंग क्या मखंग ए मंगखो आली अतकना बोमा अथा मा अतक क्या मिहोक ता खनक तैले

0: क्या कहतो अंक्या बो मा इलीगल इन्फिल्ट्रेशन या इलीगल इमिग्रेशन अब अब अंक्या मो वनजेले बो महाजा मीटिंग तुसो तुसो महाक्या सीबीओ सो तंपो एस टी बी ए सी हो तम वनजे ते के ली आल दी का अंग तो स्टेट जो हन पंग मा ना असुअशम अंग होम अचु सो ओपोंग थोम नोन ले असुना से अंक्या हे ले वनजे ले बक ले हमेजंग मा ले वै अशुक तो तेजु होनुजंग एमएलए मोहेस चाय ए मनी मेउ होनुई मा आंगोत असो के त फंक्शन टू सो मा मेउ खागम ब्लॉक केट्रिक ब्लाइंडनेस बैकलॉग मिक ककलक चिते चिनंग क्या ब्लॉक अंग अचंग अनपो ओ ल क्या का डिक्लेयर होन ले एमएलए चाय ए जबा मता सोशल मीडिया पोस्ट का हो मा मेउ खागम ब्लॉक हजा को ले गवर्नमेंट प्रोग्राम मखंग ए केट्रिक ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री ब्लॉक अंग अचंगले स्वाक्या देश में होवंग पा ब्लॉक अंग अचंगले सतनाले जु वनजले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए होथम ए सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम हनपक मक्या एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप लाइन रिलीज को दोवा बोमा हजा एग्जाम को अंक्या लाइन नो सम हजा स्लिप लाइन NTA थम ऑफिशियल वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in मखंगे डाउनलोड होनलेला अंग चोकै कामा अजंग बा हजा एग्जाम इजा लेनि बन अनथ्य बन आचत तारीख नि ए लाइ चंग पेले मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर MCI तोकंग ए अरुणाचल प्रदेश अंक सियांग ईस्ट सियांग लोअर दिवांग वैली लोहित नामसाई या तिरप डिस्ट्रिक्ट फोमा अनि जैता होनुई तो जंग अदुंग किंगपु ए ले होनुमा जो वत्ते ला लक्या ऑरेंज अलर्ट का हो बोमा तावंग कुरुंग कुमे सी योमी हिया दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट फो तो ओंतोले मामू डिस्ट्रिक्ट फो तो चु जंग होथमा वाते चंगा लक्या येलो अलर्ट का हो लफाले तैले कहो इवे इजा आकाशवाणी ईटानगर काउपे में साय अपन है पोंवंग इजा साय मानपु वंगसु दिंग मापं कपे
1: आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुन सकते हैं आप आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम और आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में। और श्रोता आइए अब सुनते हैं हिन्दी फिल्मी गाने। लीजिए अरिजीत सिंह की आवाज में आइए सुनते हैं जीनियस फिल्म का ये गाना।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: मियाँ, ये कामयाब होटल है, यहाँ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुम आते जाओ, हम सोचते जाएंगे।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे गदर 2 फिल्म का ये गाना। आप श्रोता सुन रहे हैं हमारे साथ हिंदी फिल्मी गाने। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और आप सुन पाएंगे आप इदुमिस में श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वंश श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इटानगर केंद्र है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे ईदू मिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी इटानगर आचला पुचे हेखनी भोलिनी एतानेसे इदुमिस्मी आहोला केजे दरगालंबो बुयासोलीनाबा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सुमित ओना ऑस्ट्रेलिया माचे विक्टोरिया गवर्नमेंट हाउस माने जेंदोपा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानिस में ला होंबेगा महो ईदिया उची पुआ जरगा हुए अनबोगा तिगला दा ला होगा न्यूक्लियर चीन जो नौमा अतिकानी में जरगा हुए लातिगा बमा ऑस्ट्रेलिया में अब इसी के बने इंडिया यूरेनियम हवे साइबर दो ने टेक्नोलॉजी जोता अतिकानी में जरगा हुए इंडो पैसिफिक अतिकामा खो नोआंगा अखाओ के बने अतिबुता जरगा हुए ऐ दो ने माची आए छे बुची पोबु प्राइम मिनिस्टर कानी में जरगा हुए अनबहुत तेरा ओहा बदा आहोगा अहा थाला पुची जन्यू इपी माचिनी नाप्रा तुगा महोम कई पनियर डिस्ट्रिक माचे इमु मांगा गा मतागा बमाचे कपहु ताहनु ताओ अंजिना लाइगा इमु गजी इथु चिगा नपा खेपाची इथु गजमे चिगला जिमदा ला होगा लोहित डिस्ट्रिक लोहितपुर आतिकोची जोचामा इलेंगु जोगे में इमु ताह कोबा बमाचे इमु कानी शिगाबा ऐदोने कापी मिसी नोकेयागे ने तीजातिको छि जोनल हॉस्पिटल तामकोमा गीतगा बदा आहोगा जहाँ शिगा बमा अन्य ताहुनु राहुल कुमार ने असुन असुनु विपिन कुमार दा ने लोहित डिस्ट्रिक्ट माचे एस पी आजा थुतिन जम्बा में ला होगा ने आ आदुंगी अजय चमा लोहित डिस्ट्रिक्ट पुलिस एस डी आर एफ आर्मी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दो ने एक एजेंसी माचे इमु में आशुतिया बने इथु लोके दोने मिसिमु फाबगा बदा आहोगा तिराप डिस्ट्रिक्ट मा खुंसा पोस्ट ऑफिस आनंद माओहु मीटर कानो आए छे अबा एम ए तुला बने लाजो खुंसा आए छे है तो बदा आहोगा खुंसा तिकाची इमु में ब्राजा ने बु आ तुला बा आए छे मा छिम ने देशी ऑफिस दोने बैंक कॉलोनी आए छे मने छिजिना ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लातिगा ने आए छिमा ठुगा एपीएसटी बस है अब बयागे बने ठुगा इम बाव छिमा लगादा आहोगा अनिमी आयोग में आई तुला बचा है शो ने अपतेगा नवदा ने खुंसा ईस्ट असेंबली सीट मचे एमएलए वांगलाम साउइन में लगाने आए छे है अब ने तुजिगामी आयो आयो अलाजी ना लाते बदा आहोगा जॉइंट सेक्रेटरी आजा निशिता तिवारी में छीनला सेंटर मचे आजा नंबर दोने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मचे सेक्रेटरी आजा दानी सालू में पुनी कई पनर डिस्ट्रिक्ट मचे आनिमी आयो दोने बुरुगे में नहीं आतो डाबा मने काजिगे आम है आतो ऐ दोने इमु काजिगे यहाँ है बा अतु सुवा बदा आहोगा सेंटर मचे आजा नंबर में रूमी अजबा इमु के बचे एको बेर अहवा के बता ला होगा ने अरुणाचल प्रदेश मचे ब्रू मने यहाँ यहाँ बा अतिको एम मा अतु सुवे लगा दा आहोगा अरुणाचल प्रदेश अतिका के बने हुगारु बा इमु अलंबो चे आमु जो एम ते हो पहुँचे कमिटी मीटिंग है डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेन में बुनी जिने का महो अतिका के बने बहा हुगारु बा इमु अलंबो चे आमु जो एम ते के ने अब अरे आरम्भ में अथुआ बनाओ चिपुआ चिचगा लदा ला होगा नामसाई दिशी शियार खाम्पा में बुने चिचगा हुए मीटिंग चीने का मा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एस टी बचाओ आंदोलन कमिटी दोने ट्राइब एवं मामा चे ऑर्गेनाइजेशन आरम्भ में गिगा बने एस टी सर्टिफिकेट आजप्रा हम बो ऐ दोने अथुसु हुए इनलाइन परमिट आजप्रा हाचू अमाया बा एवे ऐ दोने आ मचे इमु में रुबिया अरुणाचल प्रदेश मा खेगा जिमी ताओची पोची जगह लादा।

0: होगा। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट मा जेमियाव खागाम आतिकामा कैटरक एलोसाया इमु खेगाबु जिगाम दाने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में रिपोर्ट आजो आज तेलाचे तेजु एमएलए डॉक्टर महेश चाय में बुनी लाकेगादा आहोगा महा इनु मामब्रहुया तार इहुमा चिनु सार जोसेफ डाल्टन में सिक्किम माने अलातेला चिमरे में साइनेंथस हुकरी लाएगा आसिपुगे तवांग डिस्ट्रिक्ट माने साइंटिस्ट आलम्र में अलातेगा बचा है प्रांपाबुदा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेन में ला होगा ने अली अलाया बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई माचे साइंटिस्ट आलम्र नरोंगादा आहोगा मैं आकाजिया में अब एचला पुचे जिहोलू ने जिहो यू माचे ने काजिया आतिका माने सी आई एस आर यू जी सी नेट एग्जाम हगाई बहुए आती आमो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी एम ए आयोगा ने आ का कोपा हिलाओ के बने एन टी एच ऑफिशियल वेबसाइट मा बाजी ना लगा दा आहोगा अबुनिया ने अरुणाचल प्रदेश माचे सियांग इशियांग लोअर दिबामली लोहित नामसाई दोने तिराप डिस्ट्रिक्ट माचे आतिका बागमा नाप्रा आयो दोने अरुणिया मया अबली चो महो तवांग कुमकुमे सी योमी दोने दिबांगी डिस्ट्रिक्ट मा है पचा आयो गुमी आई दोने ईटानगर कैपिटल आतिका लाप्रागे लुटो डिस्ट्रिक्ट मामाबु एम्बोताय मामा नाप्रा आयो सदा ने इंडिया मीटोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मच में ला होगा एतानी इदमिस्मी आहो अलिमाओ दबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगढ़ नाली इदमिस्मी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया माहो एतानी हेंदो ताली जुलिंग छि चाशे छि अहोजे
1: आप सुन रहे थे इदुमिस्मी श्रोताओं का समाचार। इदुमिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं इदुमिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। और आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आइए सुनते हैं अब फिल्म दिल धड़कने दो के चंद गाने। तो लीजिए पहला गाना पेश है प्रियंका चोपड़ा एवं फरहान अख्तर की आवाज में।

आपने सुना सुकृति कक्कर एवं सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में दिल धड़कने दो फिल्म के गाने। आइए अब सुनते हैं यशिता शर्मा, मनीष कुमार थिप्पू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन एवं सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गाना गल्ला घोड़ियां।

आप श्रोता सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से श्रोता हमारी दूसरी प्रसारण सभा के प्रोग्राम से आप तक पहुंचाने में हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी गैर अत तकनीकी अभियंता तिमतिम और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तंगसा श्रोताओं का समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर आरजे श्लोकना के साथ। तो मुझे आपकी रेडियो साथी कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मशुसा डुबात रामबलाई जुलाई लिंग रातक तारीख पांग हजनेरा खोकरोक पांग आरो रंगजा बलेबी खु मिनिट थोर जामसो रुंगरंग रो कोहंग कोनका मामाइरो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट मीटिंग तवंग थुम खामसो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज र विक्टोरिया हानंग गवर्नमेंट हाउस नंग जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट कुद आरो नांगमुंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प सेहंग मुंग वरो ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम प इंडिया म सप्लाई कुम मुंग नैर न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जखुंग नंग फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट प साइन कुरित परमा ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स एंड डेडिकेटेड क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर ताम दब सहे फंग

adalah tu Wang Pang beliau kalau mai tahu tahu engine mang po lapte jamaso mai wabanga malat bang mai wablay mang so lapte mo rote aro mai asihai mang po majuota khoy hai mu mo fan de Tirap district nang rang ahan jenro khunsa post office ko wang la khunsa laju lamp nari then kham gari karwang pa tangba tung ro ta pertung nang khunsa is emle wanglam sabin ro ngo gari lamp de je ma nari sacha chi ngo phan ta majusa teju nang lohitpur hanang ha khi te praju labor mai wakro khag bungwala te परवंग वासीपो अपि नियम खोंगतो परम बलांग वाबंगा हाइपो स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स एसडीआरएफ सिपाही रे नै आर्मी रेरा परजु बलांग एजेंसी स्टाम र तखोंग दुंग ओफान द लेबर मै वाबंगा वंग पांग कुसेरो मै बिपिन कुमार नै पांग खुआ करो मै राहुल कुमार प फाइलै फाइखा म यागजाम दै तियु जोनल जनरल हॉस्पिटल नंग हिल्ले तो प्रजु रेले तो मोरो तो इंटर मिनिस्ट्रल सेंट्रल टीम मही अंसंग नंग डिसास्टर मैनेजमेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी एन तिवारी ने डिसास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी दानी सालूरा परम लेसन ऑफिसर हियंग पर आरांग कयंग रो केही पायोर डिस्ट्रिक्ट नंग खाम लेम रो तथिन जानते पर राय कर्म मनेसा केही पायोर डिस्ट्रिक्ट नंग कातो पर्तुंग नंग इंटर मिनिस्ट्रल सेंट्रल टीम रंगो पनर अरुणाचल प्रदेश वंग वडोप हा राय के छिमो रोत अलो वडोप किंग ताम र रिलीफ ने रिहैबिलिटेशन पर लपछि मोरो सेंट्रल टीम र काखाम कुत अरुणाचल हिस्ट्री ने आइडेंटिटी मानत महिंग प सेरिंग मंग मोरो मै आइडेंटिफाइंग कुरि र कामवांग कमनंग रफानचेन मंगरो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन र मनीषा कोर कमिटी फॉर अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश मीटिंग ततुंग तो मीटिंग नंग अनसंग हीरोज काउनंग रिसर्च कैंप तयंग लिन मनै हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ताम्प वोंगरो नोंगमरा परजु अनसंग हीरोज सराय मैहिंग मानफानप थोवानेसि साया नाउया मैहिंग म थलाइ फानकुम ताम कमुंगनांग अरिंग सताइरो रफानत नामसाइ डिस्ट्रिक्ट वंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नै एसटी बचाओ आंदोलन कमिटी रा परजु कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ताम तुंकांग नंग मनीषा नामसाइ हा नंग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस हॉल नंग इंटरेक्टिव मीटिंग तथुंग त नामसाइ डीसी सीआर खाम्पा प अरांग कयांग लो मीटिंग तनांग आरिंग इशूस ताम अर री वेरिफिकेशन एंड री इश्यूएंस ऑफ एसटी सर्टिफिकेट नै इनर लाइन परमिट सिस्टम लाइप सेंग लिनमरा परजु औ पछम लंब मै न्योग्रप तंगम नै परम एसटी स्टेटस कमुंग नंग ऑफस्प्रिंग लिंकेज प तंगम ताम कमुंग नंग मरफांत परम मीटिंग नंग एसटी बचाओ आंदोलन कमिटी र अरिंग फान बले इशूस तखोंग रप कतोप मंग वरो सीबीओस ताम रोत अरो स्टेप म अहुरा तान मंग वरो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लमन म कुरुम रो रे काम सो मडप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ताम र ताउ त तेजु एमले महेश चाइर मनीषा मियाव हानंग फंक्शन जंग तो प्रजु मियाव खागम ब्लॉक पर कैटरेक ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री ब्लॉक जंग मोरोक तो मुंग नंग सरकारी प्रोग्राम जखुंग नंग मियाव खागन ब्लॉक पर फर्स्ट ब्लॉक जंग मोरो एमले महेश चाइर सोशल मीडिया पोस्ट नंग फान तो सार जोसेफ डेल्टन होकर र श्यानंथास होकरी हिमालयन फनपुंग फोप बांग से मचेरा क्रोसेस ने बांग नंग ख्वाइट हाई म बांग

तो श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा डायलेक्ट न्यूज। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का रुन FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

और श्रोता दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। दिन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और शाम अपने साथ लेकर आई है सुकून, ताजगी और कुछ बेहद खूबसूरत एहसास। ऐसे ही सुहावने माहौल में आप सभी का रेडियो के इस महफिल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले यानी कि दूसरी प्रसारण सभा में आप सुन रहे थे आरजे कविता को और अब से लेकर रात्रि के ठीक 9:30 तक इस तीसरी प्रसारण सभा में मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना आपके संग बनी रहूंगी। यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर सुरों के कारवा, मीठी मुस्कान और कुछ दिल छू लेने वाली बातों के साथ। और दोस्तों, इस सुरीले सफर को आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। तो चलिए इस शाम को और भी यादगार और दिलकश बनाते हैं। बस आराम से बैठ जाइए और सुरों के इस सफर का आनंद लीजिए, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है ज्ञान और मनोरंजन का खास सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर।

कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आप सभी लिसनर्स का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे थे राज द मिस्ट्री कंटिन्यू से ओ जाना, जिसे गाया है केके ने। और फिर से आज इस अंक में मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए।

तो दोस्तों एक बार की बात है, एक कारपेंटर था, बेहद मेहनती, तारीफें ही उसकी कमाई थी। बूढ़ा हो चला था, एक दिन उसे विचार आया, अब ये सब छोड़कर परिवार के साथ आखिरी दिन बिताने चाहिए। वर्कशॉप के मालिक को उसने अपना ये विचार बताया। मालिक दुखी हुआ, उसका सबसे विश्वसनीय कर्मचारी हमेशा के लिए जा रहा था। मालिक ने कुछ सोचा, फिर कहा, चलो तुम एक आखिरी घर और बना दो। तो जैसे कि आपने सुना कि कारपेंटर को बिल्कुल मन नहीं था, वो रिटायरमेंट के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन मालिक ने कुछ सोचा, फिर कहा, चलो तुम एक आखिरी घर और बना दो। कारपेंटर का मन नहीं था, फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी लकड़ी का घर और बनाऊंगा। चूंकि वो मन से पहले ही रिटायर हो चुका था, इसलिए उसने बड़ी मुश्किलों से वो घर पूरा किया। लेकिन उस घर को देखकर कोई भी कह सकता था, ये किसी नौसिखिए ने बनाया है। मालिक घर देखने आया और बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अब कारपेंटर दुखी हो गया, सोचने लगा, अगर ये घर मुझे ही मिलना था तो मैं इसे दुनिया का सबसे शानदार घर बना सकता था।

अंत में जिंदगी हमें वही लौटाती है जो हम उसमें लगाते हैं। इसलिए हर दिन ऐसे जिए जैसे आप अपनी ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत घर बना रहे हो। हर छोटा निर्णय, हर छोटी मेहनत हमारे आने वाले कल की नींव रखती है, और इसीलिए आपका आखिरी काम ही सही, लेकिन हर काम पूरे मन और ईमानदारी से करें।

0: का सबसे बड़ा मुकाबला, जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026।
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: तो दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के आज के अंक में बस इतना ही। आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे हिंदी, अंग्रेजी तथा नौक्ते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। अब से कुछ ही क्षणों में हम फिर आपसे मिलेंगे शाम के 5:05 पर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के संग।

0: इसी के साथ लापता 5 लोगों में से 4 का पता चला, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। अरुणाचल प्रदेश के तेजू स्थित लोहितपुर में गुरुवार को हुई भूस्खलन की घटना में 6 निर्माण श्रमिक मलबे में फंसे, जिन्हें राज्य आपदा मोचन बल, सेना, पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खोंसा डाकघर के निकट खोंसा लाचू सड़क का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। विधायक वांगलम सावी ने क्षतिग्रस्त सड़क पर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधायक डॉ. मोहेश चाय ने मियाओ खागाम ब्लॉक के कैटरक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री ब्लॉक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जनसंचार विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रेम तबा को कोलंबो स्थित सार्क अनुसंधान अनुदान 2026-27 से सम्मानित किया गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आज तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य प्रदान किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज़ ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी वैश्विक के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन साझेदारी का क्रियान्वयन किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना भी की गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्र सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ भी किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति की गई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बेंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बेनीज ने भी इस भविष्य उन्मुखी साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
3: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: गत 24 जून को अरुणाचल प्रदेश के कई पन्योर जिले में बादल फटने से आए अचानक बाढ़ में लापता हुए 4th व्यक्ति का शव प्राप्त किया गया है, जिसकी पहचान 46 वर्षीय ताओ ताओ

0: अंजनी का तौर पर की गई है। इसके साथ ही लापता 5 लोगों में से 4 का पता चल गया है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। तेजू के लोहितपुर में गुरुवार को हुए भूस्खलन की घटना में 6 निर्माण श्रमिक मलबे में फंस गए। इनमें से एक श्रमिक स्वयं बाहर निकलने में सफल रहा, जबकि शेष 5 को राज्य आपदा मोचन बल, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तत्काल तेजू के जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां 26 वर्षीय राहुल कुमार और 33 वर्षीय विपिन कुमार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खोंसा डाकघर के निकट खोंसा लाजू सड़क का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। खोंसा पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक वांगलाम साविन ने आश्वासन दिया है कि क्षतिग्रस्त सड़क पर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, साथ ही इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव दानिसुल्लू और संपर्क अधिकारियों के साथ मिलकर कई पान्योट जिले का दौरा करते हुए अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का जमीन स्तर पर विस्तार से जायजा लिया। दौरे के दौरान टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रभावित समुदायों की बातों का सीधा मूल्यांकन किया जा सके। इस बीच अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने फिर से दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश का कोई भी हिस्सा पीछे नहीं छूटा रह जाएगा और हर एक गांव को सामान्य धन राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधायक डॉ. मोहेश शाय ने मियाओ में आयोजित एक समारोह में मियाओ खगाम ब्लॉक को मोतियाबिंद अंधत्वा लंबित मामलों से पूर्णतः मुक्त यानी कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री ब्लॉक घोषित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विधायक ने बताया है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम के तहत ये उपलब्धि हासिल करने वाला मियाओ खगाम देश का पहला ब्लॉक बन गया है। अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम ताबा को कोलंबो स्थित सार्क सांस्कृतिक केंद्र द्वारा साझा विरासत की व्याख्या सार्क क्षेत्र में संग्रहालय के अंतर सांस्कृतिक आख्यान विषय पर एक शोध परियोजना के लिए प्रतिष्ठित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघर्ष सहयोग सार्क अनुसंधान अनुदान 2026-27 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ताबा के प्रस्ताव का शीर्षक था When the vitrine silenced the forest, decolonizing tribal heritage communication in the museums of the Eastern Himalayan Sark Corridor. Rashtriya Shiksha Niti 2020 aur Ullas Ane Bharat Sakshrata Karyakram ke tehat nirdharit व्यक्त साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का 6वां पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित साक्षरता मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एटीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत की हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूती प्रदान करेगा। कृषि यांत्रिकी उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों के 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। यह मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मिशनरी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne today, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. Both Prime Ministers delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the summit. To secure peace and and stability across the Indo-Pacific, the leaders signed a landmark joint declaration on defense and security cooperation,

यंग जैसे बंगासो सखे गाना सिक्किम ने 1867 यंग ने तो रुक्षे कचो जान तियंग सी एस आई आर यू जी सी नेट 2026 एग्जाम या अकते जुलाई सिस्नी से सिखे न बचू कोट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सी चा लसंगे रे न्याबिते ममा एग्जाम सेंटर या ऑफिस वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in या चुकेंगे किंका इटानगर मेट्रोलॉजिकल सेंटर शिनवा रे केचे ब सियांग इस सियांग लो दिवंग वैली लोहित नामसाई से चुरप डिस्ट्रिक्ट ने चा केचे म पोंगस्पेट अवंगा या मतावंग कुरुंग कुमे सियोमी से दिवंग वैली डिस्ट्रिक्ट या चुतो यंग बेडा कवंग तो जेट मुंगा यमन चा खबर अटल ने थोरना अमन ने से प्रोग्राम के थंगलेश के बंग ना Najen rangwang, kopok rangwang se, and kerundung nuwa olah orang se ke tenglesh.

श्रोता दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम में। आप सुन रहे थे हिंदी, अंग्रेजी तथा नौक्ते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का, अब से कुछ ही क्षणों में।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

0: उम्मीद करते हैं कि बाकी सब वाकई फर्स्ट क्लास हो। जी दोस्तों, आप सुन रहे थे बाकी सब फर्स्ट क्लास है फिल्म कलंक से अरिजीत सिंह की आवाज में, और इसी गीत के साथ हमने शुरू कर लिया है आज का कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। ऐसे ही मस्ती और मजा आगे भी बना रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर और सुनिए कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पर दोस्तों, ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे फिल्म द जोया फैक्टर से पेप्सी की कसम। वैसे गाना तो मजेदार है, लेकिन ब्रो आजकल की जनरेशन कसम भी ब्रांडेड खाती है। खैर, कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में ऐसे ही मजेदार गाने के साथ हम बने रहेंगे। आप भी बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का अंक यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में हम फिर लेकर आ रहे हैं सॉफ्ट सूदिंग हिंदी गीतों का सफर, यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर। जी हाँ, मिलते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

जैसा तू है वैसा ही रहना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। 2016 में रिलीज हुई फिल्म सुल्तान के इसी गीत के साथ हमने शुरुआत की है ये सोलफुल सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स का सफर, जिसे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल में। आप सभी का कार्यक्रम शाम की महफिल में बहुत बहुत स्वागत है।

Attention, Pari Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी।

तो है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, बिल्कुल इसी गीत का आनंद ले रहे थे। फिल्म जरा हटके जरा बचके से, ये है कार्यक्रम शाम की महफिल जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। और दोस्तों अर्ज है, सुबह का उजाला हो या शाम का ढलता साया, मैंने हर लम्हे में बस एक तुमको ही पाया। लोग पूछते हैं मुझसे मेरी इस खामोशी की वजह, लोग पूछते हैं मुझसे मेरी इस खामोशी की वजह, अब उन्हें कैसे बताऊं कि इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

और दोस्तों ये हवा कहती है क्या के साथ ही सोलफुल सूदिंग गीतों का सफर कार्यक्रम शाम की महफिल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर आप जाइएगा कहीं नहीं। अब से कुछ ही क्षणों में हम लेकर आ रहे हैं हमारा विशेष वीकली कार्यक्रम व्हाट्सअप अरुणाचल। आज के इस विशेष अंक में आप सुनेंगे अरुणाचल प्रदेश में बढ़ते फुटबॉल के जुनून और फीफा फीवर की। तो चलिए जानते हैं कि इस अंक में खास क्या है।

0: व्हाट्स अप अरुणाचल, नमस्कार, मैं ऑरित्रो मुखर्जी आप सभी का स्वागत करता हूं डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर के इस बेहद खास शो में। इस वक्त पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही रंग चढ़ा है और वो है फुटबॉल का रंग। जी हाँ, सात समंदर पार नॉर्थ अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फीवर अपने सातवें आसमान पर है। हर तरफ गोल, रिजल्ट्स और स्टेटिस्टिक्स की बातें हो रही है, लेकिन फुटबॉल सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक इमोशन है, एक जुनून है। जब वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महान खिलाड़ी की विदाई पर दुनिया रोती है, तो दर्द हमारे अरुणाचल के पहाड़ियों में भी महसूस होता है। जब कोई अंडरडॉग टीम किसी बड़ी टीम को चुनौती देती है, तो हमारे लोकल ग्राउंड्स पर खेलने वाले युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान मिलती है। मैदान चाहे अमेरिका का हो या अरुणाचल का, फुटबॉल की आत्मा हर जगह एक ही है। इसलिए आज हम इस शो में फुटबॉल फीवर की बात करेंगे सीधे दिल से। उस पैशन को बेहतर तरीके से फील करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल श्री कीपा अजय जी।
1: नमस्ते।
0: जो राज्य में ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल की पूरी रूपरेखा बदल रहे हैं। और हमारी दूसरी मेहमान है मिस तेची अमीन, पहली फीमेल फुटबॉलर फ्रॉम अरुणाचल जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। लेकिन इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं कैसे फुटबॉल एक स्पोर्ट्स से हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया।
2: एक गेंद, एक ट्रॉफी, करोड़ों सपने और पूरी दुनिया की थमी हुई धड़कनें। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का महाकुंभ इस वक्त अपने चरम पर है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं, ये जज्बातों, उम्मीदों और सपनों का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ हर मिनट में इतिहास बनता है, हर सेकंड में तकदीर बदलती है, कुछ सपने साकार होते हैं तो कई बिखर भी जाते हैं। जहाँ एक तरफ महान दिग्गजों की आखिरी विदाई की आंखें नम कर देने वाली तस्वीरें हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे और नए देशों का वो अनस्टॉपेबल जुनून है जो फुटबॉल के बड़े बड़े सूरमाओं को घुटनों पर ला रहा है। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस जुनून की गूंज सात समंदर पार हमारे अरुणाचल के पहाड़ों और वादियों में भी साफ सुनी जा सकती है। अमेरिका के टाइम जोन से मैच करने के लिए आधी रात को जाकर टीवी स्क्रीन से चिपके फैंस हो, या इस मानसून की बारिश में कीचड़ से सने मैदानों पर गोल दागते हमारे लोकल जांबाज, फुटबॉल का ये बुखार यहाँ भी हर दिल में दौड़ रहा है। क्योंकि मैदान चाहे न्यूजर्सी का हो या ईटानगर का, जब पैर फुटबॉल से

0: एक ही राग गाती है। तो आइए बिना किसी देर के महसूस करते हैं फुटबॉल की इसी जादुई रूह को सीधे हमारे स्टूडियो से।
1: जी हाँ, डिस्कशन की शुरुआत अजय सर मैं आपसे करना चाहूंगा।
2: थैंक यू।
1: ये फुटबॉल फीवर जो हम कहते हैं कि ये फुटबॉल फीवर अरुणाचल में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस वर्ल्ड कप के लिए? क्या वो पहले के मुकाबले बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा देख रहे हैं आप उस फुटबॉल फीवर को इस बार?
2: सर थैंक यू मुखर्जी, आपने आज हमें यहाँ दूरदर्शन में बुलाया और स्पेशली जो वर्ल्ड कप है चार सालों में एक बार ही आता है, लेकिन जहां तक अभी फैन कम या ज्यादा के कारण मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इस बार जो टाइमिंग थोड़ा डिफरेंसेस है, वहां हमारा जो दर्शक को लेकर थोड़ा सा दिक्कतें हो सकता है, लेकिन फिर भी फुटबॉल का क्रेज स्पेशली हमारा प्रदेश में कोई कमी नहीं है। 2022 में जो हुआ था आज भी वही बरकरार है जो हमारा फुटबॉल को जो चाहने वाला है, क्योंकि सबको पता है ये पल दोबारा नहीं आएगा। फीफा वर्ल्ड कप चार साल में एक ही बार आता है, उसका इंतजार कर करके फिर आज सब ने नींद को बुलाकर आज भी क्रेज जारी है यह हमें।
1: मैम आपके पास मैं आऊंगा, आपने मैम इंटरनेशनल स्टेज पे अंडर 14 इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया है, तो आपसे बेहतर शायद ही कोई समझ पाएगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक वर्ल्ड कप चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अहम मायने रखता है। तो हम जब मैम फुटबॉल फीवर की बात करते तो जब वर्ल्ड कप आता है हम भले ही ना खेल रहे हो, इंडिया ना खेल रहा हो या हम कभी ना रिप्रेजेंट कर पाए हो, लेकिन जब हम दूसरे देशों को खिलाड़ियों को फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पर्सन पर्सपेक्टिव जब हम देखते हैं कि कोई वर्ल्ड कप चल रहा है तो वो एक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन वो कितना बड़ा इवेंट हमारे लिए होता है।
3: वो तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियस है मतलब किसी को भी अगर चांस मिलेगा तो वो तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहाँ बहुत दुनिया के सारे लोग ये सब देख रहे हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म में वो करना तो बहुत बड़ा बात है मतलब।
1: राइट, एब्सोल्युटली मैम, अभी अभी हमने देखा है कि ये स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है, दिन किसी का अच्छा हो किसी का बुरा हो, उस टाइम के रिजल्ट्स किसी के हाथ में नहीं होता चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, जो हमने ब्राजील के लिए पोर्टुगल के लिए देखा, नेमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनका सफर जो है इस वर्ल्ड कप में खत्म हो चुका है, लेकिन जब हम कैमरे पे पूरा टाइम देखते हैं कि वो मैच हारने के बाद उनका जो इमोशन बाहर निकल के आया, वो रो पड़े, इतना अचीव करने के बाद भी उनके लिए ये वर्ल्ड कप अभी भी मायने रखता है कि वो हमेशा वर्ल्ड कप में आगे जाके अपने देश को कुछ करके दिखाए। तो मैम आपसे जानना चाहूंगा एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आप अपने देश की जर्सी, अपने स्टेट की जर्सी, अपने क्लब की जर्सी पहन के उतरते हो तो हर बार आपको जीतना ही है चाहे आपने कितना भी अचीव कर लिया हो, तो ये मानसिकता के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कहाँ से आता है और कैसे आता है?
3: ये तो अपने दिल से आता है, क्योंकि जब मैंने भी अपने कंट्री के लिए जब रिप्रेजेंट किया था तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, तो हाँ ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में अगर अपॉर्चुनिटी मिला परफॉर्म करने में तो ये तो बहुत बड़ा फीलिंग से सबके लिए।
1: राइट सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा, ये वर्ल्ड कप क्रेज जब हम बात करते हैं इंडिया में अमूमन स्पोर्ट्स को लेके एक कॉमन मैं बोलूंगा क्रिटिसिज्म है कि हम सिर्फ टूर्नामेंट स्पेसिफिक फैंस हैं, जब वर्ल्ड कप आया तभी सब फुटबॉल फुटबॉल करेंगे, जब ओलंपिक्स आया तो ओलंपिक के सारे खेलों पे हम नजर करेंगे, तो फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव सर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे ऐसा ना हो कि सिर्फ चार साल में, जैसे आपने बताया चार साल में एक बार हम फुटबॉल को याद कर रहे हैं, ये फुटबॉल का क्रेज बरकरार रखने के लिए हमें क्या क्या सर करना चाहिए, करना होगा?
2: इसमें मैं आपको थोड़ा सा सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भी हूँ कोष अध्यक्ष में, क्योंकि ये वर्ल्ड कप बोल के नहीं है और फुटबॉल इंडिया में भी कंटिन्यूटी है, तो फुटबॉल जो है खेलने वाला गेम है, क्रिकेट जो है देखने वाला गेम है, दिस द डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट एंड द फुटबॉल। क्योंकि फुटबॉल जिस हिसाब से अभी हमारा जो फेडरेशन से जो काम कर रहा है आपने भी काफी देखा होगा, हम लोग भले ही सिर्फ वर्ल्ड कप को नहीं रुकता है लेकिन हम लोग जितना कंट्री को फुटबॉल को आगे ले जा सकता है हम लोग इसमें प्रतिबद्ध है और आगे भी हम लोग फुटबॉल को लेकर, और फुटबॉल का ब्यूटी इज दैट की फुटबॉल आपको पता है फुटबॉल लोगों को जोड़ने का काम करता है और वहां भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि आपके पास एक बॉल है।

0: चाहे आप किसी भी प्रकार का हो, किसी भी वर्ग का हो, आपको एक ही ग्राउंड में एक ही साथ वही बॉल को खेलना है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल.
1: राइट, अमेजिंग.
0: तो इसी प्रकार से आई थिंक हमारा जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और हमारा जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे हमारा एसोसिएशन है, हमारे सारा इंडिया में, भारत वर्ष में, वो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है. और हमें भी उम्मीद है एक ना एक दिन भारत भी वर्ल्ड कप में खेलेंगे. ये उम्मीद को तो मैं कभी छोड़ नहीं सकता. कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है. तो हम लोग जब तक है फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटिव में है, हम लोग तब तक कोशिश करेंगे कि हमारा भी लोग वहां खेले. क्योंकि वर्ल्ड कप ऐसा एक टूर्नामेंट है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आपका तकदीर बदल जाता है. क्योंकि वहां से आपको क्लब लेना चालू होता है, क्योंकि वहां बहुत सा चीज आपका लाइफ टोटली चेंज करने में वो वर्ल्ड कप प्लेटफॉर्म जो है वो होता है. और उसमें सबसे अच्छा चीज क्या है कि स्पेशली जो प्लेयर प्रोस्पेक्ट से मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप एज ए प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, आप खुद खेलते हैं और जिस गेम को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी गेम से आप कमाई का जरिया खा रहा है और आपका लाइफ स्टाइल को वो बदल रहा है, उससे तो और खुशी तो कहीं भी नहीं हो सकता है. ये तक मेरा मानना है. आई थिंक हम लोग वर्ल्ड कप सिर्फ नहीं रुकता है, दैट्स सो इज गोल.
1: राइट, एब्सोल्युटली. हम सभी ये चाहेंगे सर कि वर्ल्ड कप हम हमारा देश बहुत जल्द खेले, और ना सिर्फ खेले, हम जीत की तरफ भी बढ़े. मैम, इस पे सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो दिल से खेला जाता है. और वो एक स्पोर्ट्स पर्सन जब हाईएस्ट लेवल पे, जब आपने इंडिया रिप्रेजेंट किया है अंडर 14 लेवल पे, तो आपसे बढ़िया शायद ही कोई इस फीलिंग को बता पाएगा कि जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो तो वो फीलिंग मैम कैसा है, चाहे टूर्नामेंट कोई सा भी हो, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए.
2: वो फीलिंग्स तो बहुत भरा है. मतलब जब वहाँ हम परफॉर्म करने जाते हैं तो जब नेशनल एंथम बजता है तब बहुत सुकून मिलता है.
1: right.
2: और थियरी आइस हो जाता है अंदर से ही, खुद ही. right. और एक अपना कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना तो बहुत प्राउड मोमेंट है.
1: Correct.
2: मतलब इतना सारा पॉपुलेशन से अगर हमें किसी या फिर किसी को भी अपना कंट्री के लिए अगर चांस मिले तो वो तो बहुत बड़ा फीलिंग से, बहुत बड़ा अचीवमेंट.
1: एब्सोल्युटली मैम, इस वर्ल्ड कप में हम देखते हैं, हर वर्ल्ड कप में, सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात नहीं है, कि सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द गेम दे प्ले, कि जिसको हम मतलब एक झलक पाने के लिए हम मतलब कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे स्टार्स हमें देखने को मिलते. तो मैम, जैसे वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में, जब आज आप एक कोच भी है अभी, तो आप अपने बहुत यंगस्टर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है, तो उनमें मैम आप क्या इफेक्ट देखती है जब एक वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट चलता है, जब अपने स्टार्स को वो इतने बड़े स्टेज पे सब कुछ अपना साकार करते हुए देखते हैं, उनका स्किल्स, उनका इमोशन सब कुछ देखते हैं, तो उनका इफेक्ट यंगस्टर्स में, जो यंग फुटबॉलर्स है हमारे अरुणाचल में, उसका क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है?
2: अभी तो जैसे रोनाल्डो मेसी हो गया, बहुत बड़े बड़े स्टार्स है, लेजेंड्स है, गोट जो बोलते हैं दोनों, प्लस नेमार, एम्बप्पे, हालांड, और फिर अभी ये जो न्यू जनरेशन है, लमिन यमाल, इन लोगों को बहुत फॉलो करते हैं अभी के जो जनरेशन, नए बच्चे आ रहे हैं, यूथ्स, लमिन यमाल के फैन बहुत से. अभी तो ऑब्वियस है, ये जो रोनाल्डो और मेसी है उनके तो चर्चे बहुत बड़े हैं. तो अभी जो धीरे धीरे जो आ रहे हैं अभी यंगस्टर, वो सब उनके ही फैन बहुत ज्यादा है. अभी लमिन यमाल, एम्बप्पे, ये सब हो गए ना.
1: Right.
2: उनके ही ज्यादा है.
1: Right. सर, मैं आपके पास एक इम्पोर्टेंट सवाल लेके आना चाहूंगा कि जब ये क्रेज आता है वर्ल्ड कप क्रेज को, हम एज अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन या फिर AIFF इसको कैप्चर करके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ग्रोथ कैसे ला सकते, ताकि ये पॉजिटिव क्रेज फैन पर्सपेक्टिव से भी जारी रहे और नए स्पोर्ट्स पर्सन को भी आगे जाके खेलने का मौका और मिले.
0: ये आपने एक बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा है. तो इसका बारे में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिस इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. मैं उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बट एज ए मैं एक्सपीरियंस में कहीं लगे कि इनपुट मेरा तरफ से भी मैं दे सकता हूं, क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसी बनता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना, क्या बनाना, दैट्स गवर्नमेंट विल बी डिसाइड. ये बात को रखते हुए, जैसे लास्ट टाइम मैंने भी कहीं

0: मतलब मेरा पर्सनली जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो सपोर्ट करते थे, पर हमारे जब जमाने में पेरेंट्स कभी सपोर्ट नहीं करते थे हमें. स्कूल्स पे ज़्यादा बिजी रखते थे हमें, तो खेल डूल पे इतना वो नहीं करता था. तो उसके बाद अभी जो नया जनरेशन है उसमें भी हम देखते हैं, मैं खुद एक कोच हूँ और एक एकेडमी चलाती हूँ, तो वहाँ पर तो पेरेंट्स खुद ही बच्चों को पहुंचाने आते हैं और तब तक रुकते हैं जब तक बच्चे का मतलब खत्म नहीं हो जाता है सेशन, तब तक वेट करते हैं. पर हमारे टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता था, हम खुद ही जाते थे, खुद ही खेल के खुद ही वापस आते थे. वही
1: अभी
0: तो बहुत चेंजेस आता है क्योंकि अच्छा लगता है हमें भी देखने में, क्योंकि पेरेंट्स आजकल बहुत सपोर्ट करते हैं फुटबॉल के लिए या फिर कोई भी स्पोर्ट्स बोल के ना, बहुत सपोर्ट करते हैं और वो लोग खुद ही इंडल्ज करते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स पे, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स ले जाने में. हमारे टाइम पर ये सब नहीं होता था, बस पढ़ाए तो पढ़ाए बस. अभी बहुत चेंजेस आया है.
1: तो मैम, हम जैसे ये देखते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, अरुणाचल की बात करें, या इंटायर इंडिया की ही हर पे बात करो, तो फुटबॉल में हमारे टैलेंट की कमी कभी रही नहीं, जहां तक मेरी समझ. तो अभी ऐसा क्या चीज है फ्रॉम अ प्लेयर पर्सपेक्टिव जो आप कहोगे कि ये डिफिकल्टीज है जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप तो छोड़िए अभी भी दूर है, एशिया कप में भी जो है अभी भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू क्वालिफाई इवन. तो ऐसा क्यों है आप फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, आपको क्या लगता है कि क्या क्या एरियाज है जो यहाँ पे ये होने पे जो है इंडिया और बेहतर कर सकता है और जल्दी कर सकता है फुटबॉल में?
0: अगर गवर्नमेंट हमें और ज्यादा सपोर्ट करे, जो कोच या फिर जो प्लेयर्स होते हैं उनके बारे ज्यादा सोचे, मतलब नॉट फिजिकली बट इमोशनली भी उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए, अगर वो सपोर्ट करे फाइनेंशियली, अगर और ज्यादा गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट करे तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं.
1: राइट सर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला था दैट फुटबॉल इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स ऑल्सो एन इकोसिस्टम, इट्स बिजनेस. तो सर, ये मैम ने भी जो चीज बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, ये सब ही एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटेड. तो जब मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट आएंगे, ज्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे, तब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको यूज कर सकते हैं, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट भी कर सकते हैं स्पोर्ट में. तो सर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस व्हेन यू गो टू द स्पॉन्सर्स एंड पिच फॉर अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट, कि स्पॉन्सर्स रेडीली आते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है, क्या सवाल आपको फेस करना पड़ता है?
2: इसमें बहुत सा सवाल है. इसमें हम लोगों ने जब शुरुआत किए थे, जो एसोसिएशन, जब मैं नए नए एसोसिएशन में आए, तो समय का दौर थोड़ा सा अलग था. तो आज जो है स्पेशली जो इकोसिस्टम, जो मैं बिजनेस के बारे जो मैं कहता हूँ, तो मैंने अभी एग्जांपल लिया, अभी मैंने ट्राई नेशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया अरुणाचल में, और फर्स्ट सीनियर लेवल का इंटरनेशनल मैचेस हम लोगों ने यूपीआई में किया. तो उसमें हमने कोशिश किया स्पॉन्सर्स आगे आए, हमारा फुटबॉल को सपोर्ट करें. दुनिया को पता है कि आज का मार्केट जो है, जो दिखता है वो बिकता है. तो ये स्लोगन हमने शुरू किया, तो मैंने काफी लोगों के पास किया है कि आप स्पॉन्सर कीजिए आपका उसको ब्रांड को, हम लोग पब्लिसिटी करेगा इंटरनेशनली नेशनली. तो काफी लोगों ने सपोर्ट ही पाया. तो सपोर्ट आने का वजह से ट्राई नेशन भी कुछ कुछ हद तक हम लोगों ने सक्सेसफुली हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और स्पेशली वहां बिजनेस तो आया है, लेकिन यहाँ का जो लोकली जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको बहुत बढ़ावा मिला. जैसे एक चैंपियनशिप में आप पकड़ लीजिए, कम से कम हम 200 लोग यूथ इन्वॉल्वमेंट है, तो वो 10-11 दिन में हमारा जो यूथ है उनको कुछ ना कुछ मिलता है. तो इनको व्यस्त रखने का सबसे अच्छा प्रोग्राम जो है दस फुटबॉल है. तो इसी कारण तब क्या, तो वो बिजी रहने से यूथ जो है गलत सोचना बंद कर देता है, ताकि यूथ जो है फिर उसमें सीरियसली काम करने लग जाता है. तो स्पेशली उनके लिए भी एक, आपको पता है, उनके लिए भी एक इंसेंटिव मिलता है, और उसके लिए एक हिस्ट्री बन जाता है. कुछ सालों बाद, अब तो अभी जवान है, कुछ सालों बाद जो हमने इस स्थिति में जो काम किया, वॉलंटियर्स किया, जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में रहा, तो कुछ सालों बाद वो भी कभी दिन उम्र पहुंच जाएगा 60-70, उस समय एटलीस्ट उनके पास ये कहानी रहेगा कि हम लोगों ने फर्स्ट इंटरनेशनल में काम किया था. दिस द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल. तो ये हर समय कुछ ना कुछ आप चोरने का फुटबॉल
1: राइट।

0: काम करता है और फुटबॉल हमेशा काम
1: धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे जो है फुटबॉल को आगे बढ़ाएंगे। तो जो है डिस्कशन तो चलता ही रहेगा, लेकिन डिस्कशन को थोड़ा एक नया ट्विस्ट देने के लिए जो है मैं अपने गेस्ट के साथ एक नया सेगमेंट जो है अभी हम करने वाले हैं। तो इस सेगमेंट का जो है नाम हमने रखा है VAR, ठीक है, जो विजुअल असिस्टेंस रेफरी, उसके ऊपर है। तो इसका नियम जो मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूं। तो बेसिकली आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को आपको अग्री करना है या डिसएग्री करना है, आपकी राय हो सकती है वो। और वो डिसएग्री अग्री आप डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इफ यू डिसएग्री यू विल से इट्स ऑफसाइड, इफ यू अग्री यू विल से इट्स अ गोल, ठीक है। तो ऑफसाइड होने पे गोल नहीं होता है, दैट मीन्स यू डिसएग्री, एंड इफ यू अग्री टू द स्टेटमेंट यू विल से दैट इट्स अ गोल। तो आप दोनों की राय एक भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है। सो क्लियर है? सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है हमारे पोर्टुगल के सुपरस्टार, he has had enough, अब जो है उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ऑफसाइड और गोल?
2: गोल।
1: गोल, यू अग्री टू इट, दैट मीन्स सर?
0: या
1: गोल,
0: गोल।
1: सो बोथ ऑफ आवर गेस्ट टुडे अग्री दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज हैड इनफ, नाउ ही शुड टेक रिस्पेक्टफुली रिटायर फ्रॉम फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, मूविंग ऑन टू इट, कि 2026 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना जो है एक हैवी वेट टीम है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, लेकिन उनको जो है ड्रॉ बहुत आसान मिल गया है। They are kind of lucky. Offside or goal? Putting you in a spot. है बहुत सारे अर्जेंटीना फैंस देख रहे हैं।
2: ये थोड़ा tough है।
1: Tough है, tough है।
0: This tough. But I think it's very tough question.
1: नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा।
0: बहुत tough question है ये। I think this would be exactly जो आपका सवाल है, तो इसमें अर्जेंटीना का जो आप कह रहे हैं, तो exactly आप किस हिसाब से बोल रहे हैं?
1: That Argentina have got an easy draw. इजी ड्रॉ मीन्स ग्रुप स्टेज इजी था, उसके बाद राउंड ऑफ 16 थोड़ा इजी मिल गया, क्वार्टर फाइनल इजी मिल गया।
0: इसमें तो इजी तो नहीं है।
1: हाँ तो वही, तो यू डिसएग्री सर?
0: डिसएग्री, दैट मींस ऑफसाइड। या या या,
1: यू आर आल्सो सेइंग ऑफसाइड। ये आप अर्जेंटीना फैंस के नजरिए से बोल रहे हो या फुटबॉल?
0: नो नो नो नो, एज ए फुटबॉल फैन।
1: ओके चलो, वी विल टेक दैट, वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन।
0: ओके,
1: अभी दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप दैट इट इज प्लेइंग विद 48 टीम्स, सबसे ज्यादा टीम्स खेल रहे, तो ये होने से टूर्नामेंट का क्वालिटी बढ़ा है। यू ऑफसाइड और गोल?
2: गोल,
0: गोल,
2: गोल।
1: सो यू से दैट मोर टीम्स मोर क्वालिटी।
0: या,
1: ओके, चलिए, वंडरफुल, वी विल टेक दैट। स्टेटमेंट फोर, ये थोड़ा सा इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से, एज लॉन्ग एज इंडियन फुटबॉल इज बीइंग कोच्ड बाय अ फॉरेनर, हम कभी आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। इफ एन इंडियन कोचेस देन ही विल अंडरस्टैंड द इमोशन एंड डिफिकल्टीज मोर। Offside or goal?
0: I think this is very tough question.
1: तभी तो रखा है सर।
0: I think so. This is very tough question because हमने foreigner coach भी देखा है।
1: Yes.
0: और हमारा Indians coach भी देखा है। इसमें दो प्रकार का difference
1: है। नहीं नहीं नहीं, इसमें सर ये offside और goal, no explanation.
0: I think goal.
1: Goal. Yeah. Okay. Indian coaches के लिए, ma'am.
2: Offside.
1: ऑफसाइड, ओके। सो यू कैन से कि कोच कोई भी हो सकता है और फॉरेनर हो जाए, कोच अच्छा होना चाहिए, राइट? ओके, वंडरफुल। ओके, लास्ट क्वेश्चन इन दिस, ये दैट करंट जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स फुटबॉल में मेसी एंड रोनाल्डो से भी बेहतर प्लेयर इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। ऑफसाइड या गोल?
2: गोल,
1: गोल। दैट मीन्स यू अग्री?
2: या,
1: सर मेसी रोनाल्डो से भी बेहतर प्लेयर इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं।
0: Offside.
1: Yeah. You still feel that Messi Ronaldo ka standard is something different. Okay, wonderful. So quickly we'll move on to the next segment of the program, which is called the crystal ball. अब ये crystal ball क्या है? आप दोनों को भी समझा देते। Crystal ball में हम क्या आते हैं? भविष्य को देख पाते। तो now आप दोनों को जो है fortune tellers बनना है हमारे लिए।
0: Okay.
1: You will have to predict certain questions I'll ask. Looking at the crystal ball हमारे पास तो यहाँ पे नहीं है, बस अपने मन से आप सोच के, मन की आंखों से सोच के आप बताइए आपके प्रेडिक्शंस क्या होंगे इंडिविजुअली। आई लास्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, अभी 8 टीम्स रिमेनिंग, क्वार्टर फाइनल्स बाकी है, देन सेमीज, देन फाइनल। हु विल विन द वर्ल्ड कप? एंड नो डिप्लोमेटिक आंसर्स।
0: अर्जेंटीना।
1: ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अर्जेंटीना। ओके, सर हैज गॉन फॉर अर्जेंटीना। मैम,
2: आई हैव टू कंट्रीज, इट्स नॉर्वे एंड फ्रांस।
1: नॉर्वे, ओके, दैट इज एन इंटरेस्टिंग।
2: नॉर्वे इज अ गुड टीम।
1: ओके, इज इट बिकॉज ऑफ हालांड?
2: या,
1: ओके,
2: ही इज अ गोल मशीन।
1: वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
0: ओके,
1: गोल मशीन की बात की है, तो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल कौन सा प्लेयर करने

0: मेसी।
1: यू आर एन अर्जेंटीना फैन सर, ये समझ में आ रहा है मुझे।
0: नो आई एम नॉट अर्जेंटीना फैन बट आई लाइक मेसी।
1: वंडरफुल, ओके मेसी। मैम
2: फॉर मी इट्स हालैंड।
1: योर हालैंड, ओके। सो हालैंड एंड मेसी, आई थिंक बेस्ट चीज होगा इस दुनिया में अगर नॉर्वे वर्सेस अर्जेंटीना का फाइनल होगा। वी हैव अ ग्रेट टसल देन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इस टूर्नामेंट में गोल भले ही किसी के हो तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिसको गोल्डन बॉल मिलता है वो कौन होने वाला है?
0: गोल्डन बूट्स
1: कौन होने वाला? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
0: आई थिंक मेसी।
1: मेसी एकदम जो है सर इज नॉट डाइवर्जिंग एट ऑल फ्रॉम अर्जेंटीना। मेसी, ओके। मैम आपका पिक?
2: फॉर मी इट्स थ्री। इट्स एम्बापे, हालैंड एंड मेसी।
1: ओके,
2: थ्री ऑप्शन।
1: ओके, इस तीन में से अगर एक आप दिल से, आई थिंक
2: एक अभी तो सबसे हाईएस्ट मेसी है, पर हालैंड जरूर और स्कोर करेगा।
1: ओके ओके,
2: फ्यूचर और आगे मैच में।
1: ओके, फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। इफ यू हैव टू पिक वन डार्क हॉर्स, जो है ना, जो अंडरडॉग जिसको टीम बोलते हैं, जो और भी ज्यादा अपसेट कर सकती है, वो कौन है अभी भी इस वर्ल्ड कप में जो जिंदा है?
0: मोरक्को।
1: ओके, मोरक्को स्ट्रेट
2: फॉरवर्ड।
1: मोरक्को, लास्ट वर्ल्ड कप में हमने मोरक्को को सेमीफाइनल देखा, तो इस बार जो है यू टू आर अग्रीइंग कि मोरक्को के चांसेस है। Wonderful. So such honest and wonderful guest. Okay, the last segment before we wrap up this show, it is called जादू की छड़ी या मैजिक वॉन्ड। सो मैजिक वॉन्ड का रूल साफ है, अगर आपके पास एक जादू की छड़ी या मैजिक वॉन्ड दे दिया जाए तो what would you like to do with it? तो एक सवाल मैं पूछूंगा उसका, अगर ये सोचिए कि आपको एक जादू मैजिक दिया गया है, you can have that. First question is, अगर इस 2026 World Cup का एक पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज इंडिया में अभी हो सकता है तो वो क्या है? एक चीज, ओनली वन। इतना सोच नहीं सकते, वन थिंग, वन थिंग।
0: दैट्स टफ क्वेश्चन
1: मैम। आप
2: बोल तो टफ है।
1: एक चीज, एक चीज ऐसे, चाहे वो
2: ग्राउंड,
1: स्टेडियम।
0: आई थिंक प्रोबेबली इंफ्रास्ट्रक्चर।
1: ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ देर इज वन प्लेयर फ्रॉम 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप, हुम वुड यू लाइक टू प्ले फॉर इंडिया? वन प्लेयर फ्रॉम ईच ऑफ यू। सर का तो शायद सबको पता है।
0: नो
1: नो,
0: आई थिंक दिस क्वेश्चन देन आई गो फॉर द लामिन यामाल।
1: यंग सुपर स्टार तो आगे जाके बहुत से
2: आगे के लिए अगर सोचे तो लामिन
1: यामाल, स्पेन लामिन।
2: और
1: वंडरफुल,
2: अलग अगर एमबप्पे मेरे लिए।
1: वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। यस, तो आप दोनों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में मौजूद रहने के, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज की इस बेहद खूबसूरत चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, फुटबॉल से हमारा ये रिश्ता सिर्फ इस वर्ल्ड कप तक ही सीमित नहीं है, हमारा रिश्ता इस खेल से हमेशा रहेगा, बिल्कुल दिल से। फीफा वर्ल्ड कप के इस खुमार के बीच आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। मैच देखते रहिए, अपनी फेवरेट टीम को चीयर करते रहिए, और याद रखिए हर हफ्ते कोई पूछे ना पूछे, डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर जरूर पूछेगा। व्हाट्सएप अरुणाचल
3: भारत एलांग ऑस्ट्रेलिया लॉग डॉट एनुअल समिट एम ऑस्ट्रेलिया लॉग गवर्नमेंट हाउस विक्टोरिया लॉ इन बोसिकवाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लंग ऑस्ट्रेलिया लॉग प्राइम मिनिस्टर Anthony Albanese Vinit Lekofe Kebanko Dubosito Kebangso Australia Log Barot Sim Bojetita Kope Uranium Sablai Bipenam Pesikore Campo Bosipenam Nuclear Cooperation Agreement County Anisok Cyber Partnership Critical Technologies Telocritical Mineral Corridor Legantakam M Campodope Agreement Kakot Kiting M Sain Bosito Delok Lekofe Indo Pacific Molesok Asenganam Kamponam Legangpe Com Leader Anisi Lekoposidola Defense and Security Cofreson Legangpe Joint Declaration M Igeboto. Gekana June follow keloing Anikolang Lo Vitarik Delok Keifanyor District Lok Midum Angoko Pesibuk Raket Kenyo Gebonam Lok Midum Akpina Nasimang M Melopato Kusimang Pankunam Si Tau Tau Anjina Beditak Tagging akpi kolang ditak akke nako supag lope midum atel lok simang em matabumdung emna lukan bido. Teju lok lohitpur mole lo लेबर एकुम आकें को यूलांग रखे दे केट बम कोलो मिधुम आंगो को रखे दे केट जेट बम तो मिधुम अतल को आगे रखे केट बम कोलो लेंसी तो कु देलो अबुत किदिंग एम SDRF आर्मी देलो पुलिस किदिंग एले को दोला लालन बोसी तो कु मिधुम अन्य को राहुल कुमार देलो विपिन कुमार बुनिम बोजेरु पता पता रे इकत ला तेजु चोनल जनरल हॉस्पिटल लो पेलिक पोतुंग एमलांकोम लुकांदो कुंसालोक के लाजु एनसोन सिना बदांग ए कुंसालोक पोस्ट ऑफिस अनिंतलो एकमाप इला बदु बदांग लो कुरागारी दुक्तु योतोक एम इतुम गे बोतुंग बदु बदांग आई मानम सुई पदों असे बोचे कोलो इतुंग कुंसा इस लोक एमेले वंगलाम स्वयं बे बदांग सिम लगान रूप इचुन का जुन के वोये एमला लुकत सितुंग लुता सिम नोलो आकाश फानी इतानगर लोक तत्पादुंग Interministerial Center Team M. Joint Secretary Nishita Tiwari Lang Disaster Management Secretary Dani Salu Binyi Abut Abut Officer Kiting M. Ngebola Keifanya Lok Sivu Graket Inyokevo Nam Lok Arolegang M. Melokang Gongeboto Kangong Dolo Kangong Na Ami Kitisi Mole Lok Sivu Graket Itung Ireng Nam Telo Ami Lubisila Mape Inyoklu Nyokevo Nam M. Boje Koka Patung कांगोंग ना इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम से स्टेप अरासोक मोले अतेल को कम में पके बोमाये तो लुंग तकम लोग की मासी मोम लोम बोमियारी देलो रिलीफ आयन एम कम तकम एम अक्यम पे बिलन के बोये एम ना लुकांदो और ना सोल पोटे सोक मेलो कोन नो के मीमा इगलुगे बोना देलो तो इंग दर मोकातो फे तत्पंग का पादो फे ये गलुगे बोना अमी किदिंग एम माता का तादों कुफे कोर कमिटी फॉर अनसुंग हीरोस ऑफ अरुणाचल प्रदेश लोक रिव्यू के बंग एम मेलो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सोनामिन भी दुंगेंगे बोतो के बंग सो से को बुलुक ने कुबुकु एडी तो इन कलाई ये गे बोतो ने देलोक से को इस्तेत सोक लेगांग पे से को बुलु दे तोर गलुगे बोतो ने देम सुपाक आई पाक पे मालें कालें बोसितो पे टू बोसितो नामसाई लोक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीएट कॉन्फ्रेंस हॉल लो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसटी वसा आंदोलन कमिटी तेलो कम्युनिटी बेस ऑर्गेनाइजेशन किटिंग ए लेको फेतुरिक कारिक सिनाम के बंको मेलो बाबोसितो के बंग सिम नामसाई डिस्ट्रिक्ट लोक डीसीसी आर खम्फा विदुंगिंगे बोतो के बंग सो शेड्यूल ट्राइव एस टी सर्टिफिकेट बिलेन गेबोनम इनर लाइन फायरमिट सिस्टम इलीगल फेलू यो अमी अन्य तुलिक नाम ओमे आओ ओहन जेहन हिनाम लेगं तकाम लोग लुबोसित केवंसो एस टी वसा आंदोलन कमिटी लोग फोन अपी लुबोम यार नाम सिम दे पे कम फाविक अमी तकाम एलेको फेतोलिक मिलिक बोसियार दो पे कम कमिटी किटिंग एरोगु आगोमेम लुकांतो मेयो कहाम ब्लॉक सिम मिंगमा ना अमिका मांगना ब्लॉक को फेटेज लो एमएलए मोहेसाई पे मेलो लुकान के बोतो मेयो का हम ब्लॉक से काउंटी सोकरांग यालुब ना मिंगमा ना अमिका मांग को ब्लॉक को फे इडुंग एमलांग कोम एमएलए पे सोशल मीडिया लो अटकन बिदो सीएसआईआर यूजीसी नीट June 2025 Lok Advanced City Intimation Slip National Testing Agency Bikan Gebotung Lukan Binam Porikyang Sim Yebom Dunam Polo Sok Lo Inko Lang Kenit Tarik Lo Lang Lo Inko Lang Pini Tarik Lo Bigaboye Emla Lukan Do Porikyang Sok Bimin Gepena Poriko Kiting Porikyang Binan Natelo Bipeko Mole Legang Pe Official Website www.csirneet.nta.nic.in logidola legang aro am kabo sri lanka amla lukando meteorological center itanagar e is siang siang luar divang valley lohit nam saide loti tirap district lo domiriari ila bojeru fredong e oye amla orange alert am pikan ga botung de lok tawang kurung kume siomi de lo divang valley district de simkom ansikasi dot pe yellow alert am bikan tung sokle ko pasim kaluta dem solo indum

अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 600

0: 75 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर, या फिर आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर कारुण FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब से थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शाम ढल चुकी है और अब वक्त हो गया है उस मंच को सजाने का, जहां हम सलाम करते हैं संगीत की दुनिया के सबसे नायाब हीरो को। जी हां, आपके पसंदीदा स्पेशल शो आज के कलाकार 103.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। और आज इस महफिल में हम किसी आम फनकार की बात नहीं करने वाले, आज हम बात करेंगे उस आवाज की जिसे सुनते ही आंखों के सामने खुला आसमान, उड़ती हुई रेत और एक पुरानी सी जीप आ जाती है। एक ऐसी आवाज जो सीधे रूह को छूती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे शो के कलाकार हैं, वेल आप ही बताइए कि हमारे आज के कलाकार कौन है। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम में सबसे पहले गाना उन्हीं के आवाज में।

0: सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे शो के कलाकार है द वन एंड ओनली लकी अली जी. आपने अभी सुना ओ सनम एल्बम सुनो से लकी अली के आवाज में. लकी अली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए और म्यूजिक लवर्स के लिए यादों का एक पूरा का पूरा खूबसूरत कारवा है. इन्होंने गिटार उठाकर बहुत सादगी से हमें सिखाया कि दिल की बात सुकून से भी कही जा सकती है. उनकी आवाज में एक अजीब सा सूफी फन है, एक ऐसा ठहराव जो शायद आज के दौर के म्यूजिक में मिलना मुश्किल है. तो दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में हम पेश करेंगे लकी अली के गाए हुए नगमे और बात करेंगे लकी अली की. लेकिन हाँ, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए. कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे. नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे. वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए. फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे. नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे. अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे. सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी.

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन।

0: और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
0: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
0: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
0: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ। IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: और दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। आज के कलाकार हैं लकी अली। और अभी ब्रेक में जाने से पहले हम आपको सुनवा रहे थे ना तुम जानो ना हम, फिल्म कहो ना प्यार है से। लकी अली सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि एक मंझे हुए अभिनेता भी है। उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल 1985 से अपने करियर की शुरुआत की थी। बतौर मुख्य अभिनेता ईयर 2002 में आई उनकी म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ और संजय गुप्ता की कांटे में उनके अभिनय और गानों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था।

तो दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम छोड़े जा रहे हैं आप सभी को इसी गीत के साथ। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

Si akalwani itano pukuma telepolga alo lokukona nane hei urunga kene baje rema tanmelum alamena surunga ishi awum ara munanji rema tanaga da tacho ba surunga shi puyam tapa chore jabdan shi nerma akom hare pubabla Lugumnan India, Australia, Enol Shamit Kavaham, Dojup Girl, so Flomistan, Nam Narendra Modi, La Australia, Moka, Flomistan, Nam Anthony, Alvheni, Beni, Victoria, Government House, La Aum Aham, Lekin, Goba, Jabam, Shivasip Kumaham, Mempadom. ओक भारत लो मुख ग तग यु चुम कुन एनर्जी ट्रांजिशन हम कई अरब रेगत मुग्रिक ला न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट अरा लोक दोम अर्ग पल लो अरब लेन दागरन ग द बला फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट हम मोनोनाद ब रिमी शिता पुखुन हम मेन पाथा दो ओक्सोक तायो लो साइबर्ग आगो लो भारत ला ऑस्ट्रेलिया बनी अरब रिबा मेंबा सिसिलिक लो आगो महम जापे मेंबे मिस्टाप कुम हम मेंबा थापो सोके इन कुन ग हिलपोल ग आलो चेमनी गोला लुफ नानो हो किफानियो डिस्ट्रिक्ट लो सिबिक दिस ग नि हम बेबेली कर इंग कुनाम शिमा मेप नाने हम कापा पुकुन महम मेंबा दो ओक्सो अनि चेमप गोला निप कुन ताओ अंजिना ग शिमा हम कापा कुमसो नि शिमा मांग गोब नेरम कुनाम हम सि शिमा मेप नाब ताओ अंजिना ने कापा पुकुन महम मेंबा था दो Silo teju ga lohitpur lo kod ha lebar ni ak ko yakten jipku ma sok nyudum akken gon ha at ha galensi grik la nyudum ang gon ha SDRF gde la army ok polisi gde ha selenyap kum ha mempa do ok sok nyudum ang ga ara lok so nyi chemni gola nyek goba rekna rahul kumar la nyi chum gola nyum goba rekna bipin kumar banye tejfurga journal

आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन करें आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर कारुण FM है और अब हम आपके लिए पेश करने वाले हैं हिंदी फिल्मी नगमे, वो भी नॉन स्टॉप लेकिन कुछ ब्रेक्स के साथ, क्योंकि ब्रेक्स लेना जरूरी है जिंदगी में भी और वैसे भी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का, यही आकाशवाणी ईटानगर कारुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: और प्रेतर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
3: गीत संगीत,
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से,
3: प्यार भरे अल्फाजों में,
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

बिल्कुल दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर कारून एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। सुन रहे थे आप हिंदी फिल्मी नगमे नॉन स्टॉप एंड ऑफ कोर्स कुछ ब्रेक्स के साथ, क्योंकि ब्रेक्स लेना जरूरी है प्रोग्राम में भी, जिंदगी में भी और वैसे भी। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, पेश कर रहे हैं फिर से हिंदी फिल्मी नगमे, यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर, और उम्मीद करते हैं कि ये नगमे आपको पसंद आए।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026।

घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे हैं ये गीत, और इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का सफर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही क्षणों में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्षेत्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत। बने रहे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

नई उम्मीद, नई आशा और अटूट विश्वास के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अत आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। उम्मीद आप सभी की सलामती की, आशा कुछ और पल आपकी जिंदगी में खुशियां भरने की और विश्वास हर दम आपके साथ जुड़ने का। जी हाँ श्रोताओं, जब भी कार्यक्रम अपना गीत लेकर आती हूँ, ये जरूर सोचती हूँ कि आप अपने ही प्रदेश के गीतों को सुनकर कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करते होंगे तो कुछ आज के संगीत पर धुन मिलाते होंगे। और इसी आशा के साथ लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, मेडिको मेंजो की आवाज में ईदू गीत।

सो केपक्री द्वारा गाए गीत आप सुन रहे थे मिजू मिश्मी भाषा में। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में, और आवाजें हैं तोको तेनी और यामी लाजी की।

दोस्तों, हमारी सोच, हमारी चाहत और कल्पना की सीमा ही क्या होती है। सोचो, अगर हम एक तितली होती तो क्या करते। बेशक खिले हुए फूलों की क्यारियों में जाते, उनके रंगों के साथ खेलते, रस का आनंद लेते। और इनसे भी मजेदार बात यह है कि ये जो चाहत है ना, अक्सर कई लोगों की एक सी होती है। जी हाँ, चाहतों की पूरी लिस्ट के साथ पेश है अगला गीत गालो भाषा में झुमकेन रालेन की आवाज में।

श्रोता कापांग सोसिया द्वारा गाए इसी नोक्ते गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ज़। नमस्कार।

0: to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC Cleanliness League 2026
0: 13th Itanagar Constituency Youth Association लेकर आ रहा है Battle of 20 Wards, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
0: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
0: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
0: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 MHz पर। और अब लीजिए प्रस्तुत है पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।
3: Hello guys and welcome to the Western Music Program only on Akashvani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Today's collection is all about the quiet moments, the ones that shape us without us even realizing it. These songs reflect on where we have been, people we have met, and the hope that keeps us moving forward. We all carry pieces of where we come from. A northern attitude explores that with honesty. Noah Kahan reflects on growing up, identity, and the ways our past continues to influence us. Northern Attitude by Noah Kahan.

सदाबहार हिंदी फिल्म में गीतों का कारवां, भूले बिसरे गीत। इस अंक में आप सभी श्रोता दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है।

0: जब भी गूंजती है आवाज किशोर कुमार की, बीते लम्हों की महक दिल में जगाती है। तो दोस्तों, इसी शायरी के साथ और साथ ही आप सुन रहे थे छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आगे है कजरा मोहब्बत वाला।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

मस्ती के इन पलों के बाद हवा में अब यादों की नमी महसूस हो रही है। जब रात गहरी होती है तो बीता हुआ कल आंखों के सामने तैरने लगता है। गुलजार साहब के शब्दों और आरडी बर्मन के संगीत से सजी हुई ये हमारी अगली पेशकश।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी। पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

और श्रोता दोस्तों, फिल्म दो कलिया के इसी गीत के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आज यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अब हम हमारे तीसरी प्रसारण सभा के समापन की ओर आ चुके हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड की ओर। आप सुनेंगे FM गोल्ड से रिलेट कार्यक्रम। हम आप सभी से कल सुबह के 5:48 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित है डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल पीएचडी सीआईआई। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित जीसीसी बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: Today, the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology, and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's the slightly upgraded version of your backroom, back-off, or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र है वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या है और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
2: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो भारत एक यंग कंट्री है। एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था, तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूँ आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के, पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव एआई आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है, जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है, तो जिससे कि भारत ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कंटीन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे इंडस्ट्री एकेडमिया गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए, और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा प्रतिभा कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
4: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world. And the way in which we can actually roll out using our talent, what is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.

0: बिल्कुल रोक।
1: डॉक्टर मेहता, यहां से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहां पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
2: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाए, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

0: के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: Countrywide.

0: रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को क्रियान्वित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग के तेजी से बढ़ते क्षेत्र के रूप में खेलों का जिक्र करते हुए दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्य समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयरन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं कल दूसरे मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे T20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को यह श्रृंखला ड्रॉ कराने के लिए आज का मैच हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.

0: ऑस्ट्रेलिया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals. The Foreign Secretary said the two leaders also reviewed progress in economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi today said India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More. Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne. Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said the operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations. Mr. Modi said the India-Australia partnership has reached new heights, driven by shared values, strong people-to-people ties, and expanding cooperation across key sectors. He described the 1 million strong Indian diaspora as a vital pillar of bilateral relations. The National Commission for Women, NCW, today constituted a high-level expert committee amid growing concerns over irregularities in the rapidly expanding assisted reproductive technology sector. The panel will undertake a comprehensive review of the regulatory framework and concerned laws governing IVF clinics and assisted reproductive technology centers and gamete banks, with a focus on protecting the reproductive rights, dignity and safety of women. Former judge of the Delhi High Court, Justice Asha Menon, will chair the expert committee. The government has waived the basic customs duty on goods used in manufacturing of display assemblies, lithium-ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The Ministry of Finance has issued three separate notifications giving effect to the basic customs duty waiver on the goods used in manufacture of the three key components used in electronic devices. Iran has accused the United States of carrying out an airstrike near the Bushehr nuclear power plant. Iran's state news agency reported that the strike took place around noon today, hours after the U.S. military's central command said it had concluded its strikes on Iran. Earlier in the day, the United States launched fresh airstrikes on Iran, while Tehran responded with missile attacks targeting U.S. allied countries in West Asia. Sirens were reported in Bahrain, Kuwait, Qatar and Jordan, where the United States maintains military presence. In men's cricket, India were 10-0 in 1.3 overs against hosts England in the fourth T20 international of the five-match series at the County Ground in Bristol when reports last came in. India, led by captain Shreyas Iyer, elected to bat first after winning the toss. India trailed the series 0-2, making this a must-win game to stay alive. In FIFA World Cup, France will face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. The match will begin at 1:30 a.m. Indian time. Spain will take on Belgium in the second quarterfinal match tomorrow, late night. And in the remaining quarterfinal matches, Norway will play against England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland on Sunday morning. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। चीन के जिनजियांग शहर में एक जूता कारखाने में भीषण आग लगने से 28 लोगों की मौत। फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से और विंबलडन टेनिस में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
2: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
2: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
4: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए

0: इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी हवाई हमलों से दो दिन में 14 लोग मारे गए और 78 अन्य घायल हैं। चीन के जिनजियांग शहर में आज एक जूता कारखाने में लगी भीषण आग में 28 लोगों की मौत हो गई। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने राहत और बचाव कार्यों के लिए पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के क्वांझाओ स्थित जिनजियांग शहर में एक संयुक्त कार्यदल भेजा है। मंत्रालय ने बताया कि कारखाने में दोपहर करीब 12 बजे आग लगी। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई समान मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती है, जो सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक महिला मंत्रियों के इस मंच पर पहली बार संयुक्त बयान को अपनाए जाने के साथ संपन्न हुई। ये बैठक महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 6 जुलाई से शुरू हुए 4 दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक और ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक शामिल थी। बैठक में ब्रिक्स डिजिटल डेटाबेस और ब्रिक्स डिजिटल क्षमता निर्माण दिशा निर्देशों के लिए भारत के प्रस्तावों का स्वागत किया गया। बैठक में समावेशी और सतत विकास के मुख्य चालक के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया गया। स्मृति पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की करोलिना मोखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। करोलिना ने सेमीफाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्ता कोस्तियुक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से जारी है। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे T20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक चौथे ओवर में एक विकेट पर 29 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से और विंबलडन टेनिस में चेक गणराज्य की करोलिना मुचोवा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific, also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says, India aspires to be one of the world's top three economies driven by motto of Grow More, Achieve More. Addresses Indian diaspora in Melbourne. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. 28 people killed in a massive fire at a shoe factory in Xinjiang city of China.